सुप्रभात। रेडियो FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 और 5 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए

0: प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इसमें भला क्या शक है कि बेशक शरीर को जगह जगह तीर्थों पे जाके आप स्नान करें तो वो पावन नहीं हो सकता जब तक कि आपका मन शुद्ध ना हो। उसमें शुद्ध आपके विचार ना हो, संस्कार ना हो और हृदय में पावन भाव ना हो तो फिर भला कैसे वह मार्ग मिलेगा, कैसे जीवन की सार्थकता होगी जिस राह पर चलकर जो हम सबका अभीष्ट होता है कि अपने परम पिता का सानिध्य पाना। और अगर आपका मन पावन है तो सारी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी नदियाँ सारे तीर्थ आपके मन में बसेंगे, सदैव ही हृदय में पावन गंगा प्रवाहित रहेगी और प्रभु आपसे भला दूर कैसे हो सकते हैं तब। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है क्योंकि कुविकार और इंद्रियों की चंचलता से और फिर खासकर अहंकार जो सबसे बड़ा बाधक है, तो इससे अपने आप को बचाना बहुत बड़ी तपस्या है। यही तपस्या तो करनी है ताकि हमारा जो शुद्ध मन है, जो पावन भाव है, वो हमें सुमार्ग पर ले चले।

देखिए, ये तो अपने इष्ट के प्रति उसको समझने, उसको महसूस करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि वो जो परम तत्व है, वह चाहे किसी भी नाम से आप उसे पुकारें, किसी के नाम से भी, लेकिन जो जिस रूप में उसे याद करना चाहता है, तो वह उसको उसी रूप में ही नजर आते हैं। कान्हा को ये देखिए, अगर हम ईश्वर के सगुण साकार रूप में उसकी बात करें, तो हम सभी को राम और कृष्ण के चरित्र कथाएं प्रेरणी भी लगती हैं, होती भी हैं, और बहुत ही सहज और सरल माध्यम है भक्ति का। अब ऐसे में देखिए, सखी क्या कहती है कि एक दूसरे से बात करती हैं, कहती हैं कि सांवला सलोना मन को भा गया है, मुझे

श्याम सुंदर की एक झलक देखी, वो उनकी एक झलक में ही ऐसी दीवानी हो गई, ऐसी बावरी हो गई।

आप सुन रहे थे अभी ये देशभक्ति परक रचना को शांति माथुर के स्वर में, रचना थी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वर में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे चित्रा रॉय, बलदेव कृष्ण सहगल और साथी और मोहम्मद रफ़ी के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए।

0: प्रस्तुत है लक्ष्य प्राप्ति संबंधी विचार, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया और स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, कला, साहित्य या जीवन का कोई कार्य क्षेत्र हो, उससे जुड़ा व्यक्ति उसमें अधिकाधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। कुछ लोग अपनी लगन और परिश्रम से, कुछ धन बल से, कुछ छल से, तो कुछ दूसरों के सहयोग से ये सफलता प्राप्त करने का उपाय करते हैं। किंतु निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने का उपाय है अपने लक्ष्य के प्रति तत्परता व एकाग्रता। संसार में अनेक महापुरुष इसी गुरु से महान बने हैं। इस संबंध में महाभारत की एक कथा है कि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे और वो उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने पेड़ पर एक बनावटी चिड़िया को लटका दिया और सर्वप्रथम युधिष्ठिर से कहा कि वह चिड़िया पर निशाना लगाए। युधिष्ठिर ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया कि द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि इस समय तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे वृक्ष और उसके आसपास के अन्य वृक्ष, शाखाएं आदि सभी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को बुलाया और उनसे भी चिड़िया पर निशाना लगाने को कहा तथा उन सभी से यही प्रश्न किया कि तुम्हें निशाना लगाते हुए क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि उसे आकाश दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा कि वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि उसे चिड़िया दिखाई दे रही है। जब अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने उन्हें उत्तर दिया कि गुरुदेव, मुझे तो इस समय केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और आसपास की कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही। अर्जुन का ये उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने अर्जुन को निशाना लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही अर्जुन ने तीर छोड़ा और चिड़िया की आंख भेद दी। एकाग्रता और सफलता एक दूसरे के पर्याय हैं। एकाग्रता अंतर्मुखी होने से प्राप्त होती है। सामान्यतः मनुष्य का स्वभाव बहिर्मुखी होता है। इसके अंतर्गत वो कान, नाक, आंख, त्वचा तथा जिह्वा के द्वारा बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करके मस्तिष्क को जानकारी देता है, किंतु इन इंद्रियों के द्वारा मन के अंदर के आत्मतत्व की जानकारी नहीं मिल पाती है। आत्मतत्व की जानकारी तभी संभव है जबकि इंद्रियों की दिशा को मोड़कर अंतर्मुखी कर दिया जाए। अंतर्मुखी होने पर ही चित्त की चंचलता को रोका जा सकता है। युधिष्ठिर तथा अर्जुन की बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी प्रवृत्तियों में अंतर के कारण ही युधिष्ठिर को जहाँ चिड़िया के स्थान पर वृक्ष दिखाई दे रहे थे, वहीं अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, जो कि उसका एकमात्र लक्ष्य था। ये एकाग्रता ही जीवन में सफलता का सशक्त माध्यम होती है।
0: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में लक्ष्य प्राप्ति संबंधी ये विचार, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का और वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर सुरेश वाडेकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीत बधे प्रसारण। गायक स्वर सुरेश वाडेकर का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज आप पूर्वाह्न 11:10 से सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण। समय याद रखिए, आज पूर्वाह्न 11:10 से। सुबह 9:30 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में भारत देश पर गांधी जी के विचार। सुबह 9 का समय रहेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर संजीव जैन से भेंट करेंगे ओपी सिंह।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे संध्या वंदन कार्यक्रम। संध्या 6:50 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम में परजीवियों से पशु सुरक्षा और सामयिक कृषि कार्य विषय से संबंधित चर्चा आप सुनेंगे। साथ ही इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सुशांत कुमार की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा धान की फसल में कीट प्रबंधन। और शाम 7:31 का समय रहेगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम शाम सुहानी का, और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप दोपहर 12 बजे भी सुन सकते हैं गीत बात एसएमएस कार्यक्रम के अंतर्गत।

संध्या 6:15 पर सुनिएगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज नवकथा में आज कथा प्रस्तुत करेंगे नरेंद्र आत्रे और कथा का शीर्षक होगा मोहिनी। युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम विषय से संबंधित। इसके अतिरिक्त एक खूबसूरत इत्तेफाक ये शीर्षक से संबंधित गीतों भरी कहानी प्रसारित की जाएगी। प्रस्तुति शारका शेख की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 का। बहनें कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस विषय पर। निधि शर्मा वार्ता प्रस्तुत करेंगी इसी कार्यक्रम में। विषय रहेगा पेस्ट कंट्रोल पर्यावरण संरक्षण की जरूरत। दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में राधा दीक्षित प्रस्तुत करेंगी मल्हार। कार्यक्रम आबो हवा सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज रघुनाथ मिश्रा जानकारी देंगे वनों का विनाश और हमारा पर्यावरण धर्म से संबंधित। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर सुनिएगा खेमचंद यदवंशी की लिखी हुई नवटंकी। आज प्रसंग होगा शिव शंकर यशोदा संवाद। प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की होगी और प्रातः 7 आप सुनेंगे पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले विसरे गीत। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में विजय सिंह नौलखा से जानकारी। विषय है बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंधन और जानकारी।

0: दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के बकरी फार्म हमारे देश में प्रचलित हैं। अर्धसघन आधारित फार्म, इस पद्धति में बकरियों को 4 से 5 घंटे चराई के साथ ही प्रतिपूरक आहार दिया जाता है। दूसरी तरह का फार्म है सघन पद्धति आधारित फार्म। इस फार्म पर बकरियों को चरने के लिए नहीं भेजा जाता, फार्म पर ही उनके चारे, दाने एवं स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था की जाती है। व्यावसायिक रूप से अधिक संख्या में बकरी पालन करने के लिए फार्म का होना अति आवश्यक है। फार्म पर बकरियों का उचित ढंग से प्रबंधन करने में आसानी होती है। फार्म पर वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी फार्म पर मुख्य रूप से बकरियों से दूध निकालना, दाना

0: पद्धति आधारित फार्म। इस फार्म पर बकरियों को चरने के लिए नहीं भेजा जाता, फार्म पर ही उनके चारे, दाने एवं स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था की जाती है। व्यावसायिक रूप से अधिक संख्या में बकरी पालन करने के लिए फार्म का होना अति आवश्यक है। फार्म पर बकरियों का उचित ढंग से प्रबंधन करने में आसानी होती है। फार्म पर वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी फार्म पर मुख्य रूप से बकरियों से दूध निकालना, दाना चारा खिलाना, फार्म की सफाई, रोगी बकरियों की चिकित्सा, समय समय पर टीकाकरण एवं प्रजनन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं। फार्म पर बकरियों का रिकॉर्ड बनाना तथा दाने चारे एवं दवाइयों का विवरण भी अंकित किया जाता है। 100 बकरियों के लिए 70 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा आवास बनाना होगा। इसके साथ ही आवास के बाहर भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है, जिससे कि बकरियां वहां आराम से घूम फिर सकें। बकरी फार्म पर श्रमिकों के अलावा एक सुपरवाइजर होना चाहिए, जिसे बकरी पालन का व्यवहारिक ज्ञान हो। साथ ही बकरियों के प्रबंधन में वो कुशल भी होना चाहिए। नई बकरी फार्म को खोलने से पूर्व आप CIRG मखदूम फरह के व्यावसायिक बकरी पालन पर होने वाले प्रशिक्षण से प्रबंधन कौशल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बकरी फार्म पर चारा दाना खिलाने हेतु फीडर, पानी की चरही, चारा काटने की मशीन, स्प्रेयर, दूध निकालने के बर्तन, खुरपी, हसिया, चारा काटने हेतु डंगी तथा बकरियों का नाखून काटने हेतु नेल कटर, घास काटने की मशीन एवं नियमित पानी की व्यवस्था हेतु बिजली का समरसेबल पंप या मोटर होना अति आवश्यक है। 100 से अधिक संख्या में होने पर बकरियों को नर मादा के अलग समूह में रखते हैं। 3 माह से ऊपर के बच्चों या मेमने को अलग रखने की व्यवस्था की जाती है। बकरी के छोटे बच्चों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बकरी के छोटे बच्चों को मौसम तथा बीमारियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। बकरी के नवजात बच्चों को पैदा होने के बाद आधे घंटे के भीतर खीस पिलाना चाहिए, जिससे बकरी के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बकरी के बच्चों में निमोनिया, एंटोटॉक्सीमिया तथा कॉक्सीडियोसिस रोग प्रमुखता से होते हैं। निमोनिया के बचाव के लिए ठंड के दिनों में बकरी के बच्चों को बंद बाड़े में रखना चाहिए तथा फर्श पर सूखी घास की बिछावन देना चाहिए। एंटोटॉक्सीमिया से बचाव के लिए 3-4 माह की आयु में बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। साथ ही कॉक्सीडियोसिस रोग से ग्रसित बच्चों में दस्त की समस्या हो जाती है, इसके बचाव के लिए बाड़े की सफाई ठीक ढंग से रखनी चाहिए। अगर फर्श कच्चा हो तो उस पर चूने का छिड़काव सप्ताह में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि बकरियां चरने के लिए जाती हैं तो इन्हें प्रतिपूरक आहार के रूप में दाना चारा दिया जाता है। एक वयस्क बकरी को आधे से 1 किलोग्राम हरा चारा, 300 से 400 ग्राम भूसा तथा 150 से 200 ग्राम दाना देना आवश्यक है। बकरियों को हरे चारे के स्थान पर चारा वृक्षों से प्राप्त पत्तियां भी खिलाई जा सकती। बकरी फार्म को सुचारू रूप से चलाया जाए, बकरी की अच्छी नस्ल रखी जाए और उसके खान पान एवं बकरियों के रोगों की रोकथाम का उचित प्रबंध किया जाए तो बकरियों की मृत्यु दर कम होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। इस समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो आपसे कुछ ही देर में।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय। अद्य राष्ट्रिय हस्ततंतु दिवस उत्साहेन आनंदेन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 75वें वर्षे अगस्त मासस्य 7वें दिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्य संघर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः, निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः, शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें। ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामने

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत साथियों, आप सबकी नजर इस गीत से है।

ये आवाज़ थी दीदार फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की, और इस गीत को शब्दों में ढाला था गीतकार शकील हुदैनी ने, संगीतबद्ध किया था संगीतकार नौशाद साहब ने। और साथियों आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जीनत फिल्म में इस गीत को आवाज़ें दी थी जहरा भाई अम्बाली वाली और कल्याणी ने, संगीत हाफिज का था। और साथियों आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

इस वक्त आप सुन रहे हैं जीनत बेगम की आवाज़ में, फिल्म है एक थी लड़की का ये गीत। गीत को लिखा विनोद ने, संगीत अजीज कश्मीरी का।

सी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। आज हैंडलूम से खरीदारी करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबर्धन योजना को दी मंजूरी। घुमंतू समाज द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों से उत्साह और उमंग के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की है।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार

0: बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है।
1: प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने को कहा।
0: हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित कर ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर धन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गोबर्धन योजना को मंजूरी दिया जाना आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
3: केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के लिए घुमंतू समाज द्वारा आयोजित आभार ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था उसी संकल्प का विस्तार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं।
4: स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्या

0: कार्यात्मक खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी और उन्नाव सहित बाढ़ प्रभावित 8 जनपदों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए इन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी तत्परता से जारी रहें और कहीं भी सहायता में कोई कमी ना रहे। इससे पहले एक अन्य उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने 85 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए।
2: अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से अनुसंधान, नवाचार और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की अपील की। इससे पहले वह HPV से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में चल रहे निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में भी पहुंची। वहां उन्होंने टीकाकरण करवाने वाली बच्चियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्राओं से HPV से बचाव के टीकाकरण के साथ साथ बेटियों की शिक्षा और नशा मुक्त युवा अभियान की महत्ता के बारे में भी चर्चा की। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक जन आंदोलन में बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी कल खतरे के निशान को पार कर गई। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है।
3: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज से लेकर आगामी 9 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। आज हैंडलूम से खरीदारी करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबर धन योजना को दी मंजूरी। घुमंतू समाज द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल हो स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे ही होंगे। हम तो राधे रानी तो यही कामना कर रहे हैं कि आप सब राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें। और अब या समय तो देखो बरसात को जो है मौसम चल रहे हो है, तो या में तो जहाँ मन पुलकित है जाए है, जब वर्षा की बूंदें पड़े हैं, प्रकृति नहाए धो के खिल उठे हैं, तो बड़ी अच्छी लगे है। तो जहाँ हरियाली खूब मतलब है जाए है, पेड़ नहाए धो के, फूल पत्ती जो है वे नहाए धो के, जब बारिश पड़े है तो ऐसे मतलब सुंदर लगे हैं, है ना। वन उपवन जो हैं वे निखर उठे हैं। तो जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति सुंदरी इतना अपना श्रृंगार करे है, तो वो मतलब हम सब उनके मन को तो भावे ही है। लेकिन आनंद देखो, अगर आपको स्वस्थ शरीर है तो फिर आनंद को जो आनंद है वो दोगुना है जाएगा। तो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें और अच्छो अच्छो बढ़िया खाएं, बासी निकू न खाएं, जब भी खाएं तो ताजो ही भोजन करें, और मौसमी बीमारियों से अपने आप को बचाव करके रखें। आप देखो महीना तो सावन को ही लग गया है, और अपने सावन यानी कि सावन में जो है या महीना में तो वैसे ही अपने ब्रज में तो झूलनो उत्सव जो है शुरू है जाए है, है ना। तो यह समय तो देखो मंदिरन में बढ़िया बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, घटा हिंडोलन के सुंदर रंग बिरंगे थे और घटा ऊपर रहे हैं, है ना। तो वो तो अपने समय और वो दिन के हिसाब से हुए हैं, है ना। तो आनंद की जब बात हम करें हैं तो अपने ब्रजमादरी कार्यक्रम में तो आनंद ही आनंद है कि नहीं। कभू जो है आप हम आपके ताई वार्ता लेके आवे हैं, तो कभू जो है ये ब्रज की माटी तो ही प्रणाम कार्यक्रम ले, सब बढ़िया कार्यक्रम लेके आवे हैं, या और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो आप सब उनको वो अच्छे लगे हैं ना। तो अब आज जो है हम आपके ताई नौटंकी लेके आए हैं, और ये जो नौटंकी है तो या को लिखो है खेमचंद यदुवंशी ने, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक और मोहित श्रीवास्तव की है। और आज नौटंकी में जो प्रसंग है वो है शिव शंकर यशोदा संवाद।

0: मैया तू मोगु लाला के दर्शन ना करावेगी?
1: नहीं कराऊंगी।
0: ठीक है मैया, देखू तू लाला के दर्शन कैसे ना करावेगी। हे भक्त वत्सल प्रभु, अब तो आप भी कुछ करिए प्रभु, अब तो आप भी कुछ करिए, मैं आपके बिना दर्शन के लौटूंगा नहीं।

0: पिया तेरा लाला कैसे रो रहे हो?
1: अरे कछु पतो ही ना है, रोए चले जा रो, रोए चले जा रो, चुप ही ना है रोए।

बाबा जी आयो ना, वही ने लाल आपे कछु जादू टोना कर दियो दीखे। अगर मैया तू कहे तो मैं भाई बुलाए लाऊं।

0: बाबा तू आसन लगा के बैठो यहाँ पे, और यशोदा मैया तो को बुलाए रही है वहाँ पे, चल जल्दी चल।
1: कौन सी यशोदा मैया सखी, मैं ना जाऊंगा तेरी यशोदा मैया के पास।

तो अभी जो है आप सुन रहे थे खेमचंद यदुवंशी की लिखी भई नौटंकी, शिवशंकर यशोदा संवाद, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक और मोहित श्रीवास्तव की हती। आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम यही विश्रामले है। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम

0: 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
4: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने

0: कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centre has notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks.

प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं खूबसूरत से फूलों का गुलदस्ता, रंग बिरंगे तरह तरह के जिंदगी के भावों से रंगे हुए।

आप अभी सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में भरोसा फिल्म के गीत को शब्दों में ढाला था। इस गीत को गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था संगीतकार रवि ने। और साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

शैलेंद्र की इस खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है लता मंगेशकर साथ ही उन्हें, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। संगीत दिया है संगीतकार शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म भाभी का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने अभी सुना ये खूबसूरत सा गीत, जैसे हमने लिया था फिल्म भाभी की चूड़ियाँ से, और इस खूबसूरत से गीत को शब्दों से, शानदार शब्दों से पिरोया था। क्या शुद्ध हिंदी थी, वाह, पंडित नरेंद्र शर्मा ने, और धुन से संवारा था इस गीत को संगीतकार सुधीर ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म संगीत का। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

भाभी फिल्म में ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की, और गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। साथियों आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और कमल बरोट की आवाज़ में फिल्म बरसात की रात का गीत लिखा था। गीत को साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया था रोशन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे स्नेहा पंत और साथियों की आवाज़ में फिल्म हल्ला बोल का ये गीत। और अब साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: हसन कमल की इस खूबसूरत सी रचना को आवाज़ें दी थी आशा भोसले महेंद्र कपूर ने और फिल्म आवाम का भी आपने ये सुना गीत। इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का गीतांजलि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर संजीव जैन से OP सिंह की ली गई भेंटवार्ता। विषय है बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियां।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, ऐसा कहावत है कि अगर स्वास्थ्य है तो जीवन की हर नियामत आपके पास है, अगर स्वास्थ्य है तो हर धन आपके काम का है, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ दुनिया की आपको वो खुशी नहीं दे सकती जिसका जिसके लिए वो बनी है या जिसके लिए आप बने हुए हैं। अब स्वास्थ्य खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कोई हरी बीमारी लग जाती है, कभी कोई परेशानी हो जाती है। तो आज की चर्चा में हम एक बड़ी सामान्य बीमारी है लेकिन कई बार अगर उसको ध्यान न रखें, जानकारी न हो या हम लापरवाह हो जाएं तो वो खतरनाक भी हो सकती है, और वो है पीलिया। तो पीलिया क्यों होता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसकी रोकथाम हो सकती है और कैसे अगर हो जाए तो उससे हम बच सकते हैं या इलाज करा सकते हैं, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार जैन साहब जो वरिष्ठ सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: श्रोताओं को मेरा नमस्कार
1: जी। तो पीलिया को सामान्यतः लोग बड़े हल्के में लेते, क्या ये ठीक है?
2: नहीं, पीलिया जो है वैसे तो कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और यदि समय पर ये डायग्नोज हो जाए तो बिल्कुल ये सही हो सकती है। मगर पीलिया भी दो प्रकार का होता है, एक तो पीलिया होता है कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ, और एक पीलिया जो होता है वो बिलेरी ट्रैक्ट मतलब पित्त की नली और पित्त की थैली में कोई बीमारी ऐसी हो जैसे कि पथरी की वजह से या कोई कैंसर पित्त की नली में हो जाए उसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। तो दिक्कत उसमें जब आती है कि जब लोग गांव के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि पीलिया है और झाड़ने से सही हो जाता है, और वो पीलिया जो है वो कैंसर या पित्त की नली में पथरी की वजह से पीलिया हो रहा है और पित्त रुक गया है और वो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस रुकावट के वजह से पीलिया कहते हैं, वो उस टाइम खतरनाक हो जाता है क्योंकि वो डायग्नोज नहीं हो पाता है। और जो पीलिया इन्फेक्शन वाला होता है वो भी पीलिया तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है ओरोफिकल जो कि हम लोग गंदे खाने पीने से गर्मियों के मौसम में बरसात के मौसम में गंदा खाना खाते हैं, हाथ नहीं धोए हमने खाया तो वो हेपेटाइटिस ए बोलते हैं उसको, और एक पीलिया जो होता है इन्फेक्शन की वजह से ब्लड टू ब्लड जो कि जैसे कि आजकल क्या होता है झोला छाप और ये लोग हैं एक एक ही गंदी सुई से हमने दूसरे मरीजों को सुई लगा दी पीलिया वाले मरीज की, तो हेपेटाइटिस बी और सी जो कि इस क्षेत्र में हमारे

0: वृक्ष क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल रहा है,
1: जी जी
0: तो वो
1: जी
0: भी खतरनाक हो जाता है, जो कि हेपेटाइटिस ए भी, यदि हम लोग डायग्नोज करें और ट्रीट ना करें तो वो भी हेपेटाइटिस ए भी खतरनाक हो जाता है।
1: जी, यानी खतरनाक अगर लापरवाही है तो फिर कोई भी पीलिया हो वो आपको परेशानी देगा इसमें। अब
0: बिल्कुल
1: इसमें
0: सही।
1: प्रारंभिक तौर पे अगर हम देखें तो लक्षण क्या इसमें उभर करके आते हैं, जैसे पीलिया हो रहा है या परेशानी पनप रही है, अब वो सामने तो बाद में आएगी लेकिन कुछ लक्षण तो शुरुआत में शुरू हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो वो
0: बिल्कुल
1: कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं किसी परेशानी में हूँ या
0: हाँ,
1: पीलिया जैसी कोई समस्या मेरे सामने हो सकती
0: पीलिया
1: है?
0: के जो प्राथमिक लक्षण होते हैं, जैसे तो जो बिलिरुबिन दो हमारा 2 ग्राम से ऊपर आता है, तो जब आंखों में आता है, उससे पहले यदि काम में मन ना लगना, मन थका थका लगना, पेशाब में हल्का पीलापन आ जाना और हल्का हल्का बुखार रहना,
1: जी
0: यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही लीवर की जांच कराकर और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर
1: इसको
0: देखना चाहिए।
1: दिखा लेना चाहिए उसमें। तो अगर ये लक्षण है तो क्या मतलब एक जांच ही बनती है या कोई फिजिशियन सामान्य तौर पे देख के भी बता सकता है कि ये है, या फिर वो लिख देगा कि भाई ये टेस्ट
0: नहीं,
1: कराने हैं?
0: यदि मरीज के पेट में दर्द भी है इन लक्षणों के साथ में, तो फिर तो ब्लड की जांच, जिसमें कि लीवर की जांच बहुत जरूरी है, प्लस अल्ट्रासाउंड जरूरी है।
1: जी, ये सब करा लेना चाहिए उसमें। तो क्या जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति इस चपेट में आ गया है और किसी कारण से लापरवाही हुई, समय पर नहीं दिखा पाया, फिर क्या बनता है उसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है तो कहाँ जाना चाहिए उसको? कई बार ये समझ में यही नहीं आता कि हम दिखाएं कहाँ।
0: यदि उसका भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, आंखों में पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो तुरंत ही उसको भर्ती नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर भर्ती की सुविधाएं हैं, जिला चिकित्सालय है, संयुक्त चिकित्सालय है, वहाँ पर भर्ती होकर अपना तुरंत ही ग्लूकोज लगवाना चाहिए, जिससे कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसबैलेंस ना हो और मरीज की कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि पीलिया ज़्यादा बढ़ने पर दिमाग पर असर कर जाता है, जिसको कि हम लोग मेनिनजाइटिस के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि दिमाग पर पीलिया असर कर गया तो फिर वो रिवर्सिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है पीलिया जैसे होता है, तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा
0: इसमें
1: प्रभावित होता है?
0: ज़्यादा लीवर से प्रभावित होता है,
1: जी
0: और लीवर प्रभावित होने से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अल्कोहल वगैरह भी लेते हैं, और अल्कोहल लेने से भी पीलिया लीवर ख़राब हो जाता है और लीवर सिरोसिस हो जाती है, और तो उसकी वजह से भी पीलिया आ जाता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी कंडीशन में जहाँ पर जो लोग हमारे भाई और जो शराब पीते हैं और उनको पीलिया के लक्षण आ रहे हैं, तो उन कंडीशनों में वो तुरंत ही इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं।
1: जी, यानी न सिर्फ इन्फेक्शन और वैसी परेशानी बल्कि कई बार हमारी आदतें भी
0: हाँ
1: इसको बढ़ावा देती हैं
0: बिल्कुल
1: उसमें, तो ऐसी आदतों को या ऐसे व्यसन को हमको छोड़ना चाहिए। अब डॉक्टर साहब जैसे मान लो अब कोई इस गिरफ्त में आ गया तो क्या इलाज तो संभव है इसका?
0: हाँ, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि पीलिया मोटे मोटे रूप में सर्जिकल पीलिया, जिसमें कि पथरी या वो होता है, या इन्फेक्शन के वजह से है। हेपेटाइटिस ए पीलिया जो है वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, यदि आप कोई भी इलाज ना करें, घर पे बैठ कर रेस्ट करें और साग सब्जी अच्छे भोजन करें, तो वो पीलिया अपने आप ही धीमे धीमे कम होता जाएगा, क्योंकि रेस्ट बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और
1: जी
0: दूसरा कार्बोहाइड्रेट डाइट, ग्लूकोन डी वगैरह पानी में घुल के पिए, और आप कहें उनका डायग्नोज होना जरूरी है कि ये हेपेटाइटिस ए ही
1: जी
0: है।
1: जी यानी जो पुराने लोगों की जो वो है कि भाई झाड़ फूक करा लो, वो एक समय में लिमिटेड समय में अपने थोड़ा सा परहेज से रहे तो वो ठीक हो जाता, तो वो शायद हेपेटाइटिस ए के संबंध में
0: हाँ बिल्कुल,
1: वो।
0: आपको बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास में मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो माला डलवा ली गले में और वो माला धीमे धीमे लंबी होती चली गई और वो हमारा पीलिया अपने आप सही होता गया,
1: तो
0: तो
1: वो
0: वो
1: है।
0: हेपेटाइटिस ए होता है। होता क्या है कि ये जो झाड़फूंक वाले होते हैं, वो धागे में और लकड़ी की अलपेटा देकर वो माला पहना देते हैं, वो अलपेटे अपने आप ही धीमे धीमे खुल के लंबे होते चले जाते हैं, और मरीज समझता है कि ये हमारी माला पीलिया झड़ रहा है और माला लंबी हो रही है, वो अलपेटे खुलते हैं और वो अपने आप कम हो जाती है, वो हेपेटाइटिस ए के कंडीशन में होती
1: चलिए
0: है।
1: वो तो ठीक है कि वो आपकी मान्यता से, लेकिन बी है, सी है
0: हाँ
1: या क्रोनिक कंडीशन है तो फिर
0: हाँ
1: इसमें तो इलाज बनता है, जाना चाहिए, दिखाना चाहिए,
0: हाँ
1: यहाँ लापरवाही जो है
0: हाँ
1: ठीक
0: यदि
1: नहीं है।
0: हेपेटाइटिस बी और सी है तो इसमें बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है, और हेपेटाइटिस बी को हम लोग क्योर तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन आ गया तो क्योर तो नहीं हो सकता है, मगर यह है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: उसको इलाज से और परहेज से थोड़ा लंबा मतलब सहज
0: हाँ
1: जीवन गुजार सकते हो
0: बिल्कुल।
1: उसमें। अब थोड़ा सा चूंकि बरसात का मौसम आ रहा है इसमें, यहाँ थोड़ी सी ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस मौसम में जहाँ पानी होगा, पानी भरेगा तो मच्छर तो होते ही है, बुखार सामान्यतः रहेंगे, लेकिन और

0: आपने कहा जैसे गंदगी से पीलिया भी होता है, लेकिन और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस बरसात के मौसम में और गंदगी से फैलेंगी और जिससे हमें बचकर रहना
1: हाँ,
0: चाहिए?
1: जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस ए जो है गंदे खाने पीने की वजह से होता है, इसके साथ साथ अन्य बीमारी जो होती हैं वो कोलाइटिस, आंतों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, और सेकंड जो कि पेट की अन्य बीमारियां, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि मरीज जो है खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो टाइफाइड मियादी बुखार जो होता है ये भी वाटर बॉर्न डिसीज होती है जो कि आजकल काफ़ी फैल रहा है।
0: तो इस समय कम से कम खान पान में साफ सफाई रखें, शुद्धता रखें, रखा हुआ खाना ना खाएं, ढका हुआ खाना ही खाएं। अब जैसे हालांकि अब तो त्योहार तो शुरू होंगे, लेकिन शादी ब्याह का मौसम तो अब नहीं रहा, लेकिन ऐसे में जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं, कोई पार्टी होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, वहाँ बड़ी देर से प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब काफ़ी देर, और हम शाम को उसको खाते हैं, तो वहाँ क्या चुनाव होना चाहिए, हमें किस तरह खाने का चयन करना चाहिए? सारा खाना हमारे लिए नहीं होता, लेकिन हम फल भी खाते हैं, जूस भी पी लेते हैं और सब तरह के खाने को खाते हैं, तो वहाँ एहतियात क्या रखनी चाहिए ऐसे में?
1: शादी ब्याह की बात आप छोड़िए, घर में भी यदि खाना 3-4 घंटे बना हुआ आपका बाहर रह गया तो टेम्परेचर 45 से ऊपर हो रहा है तो ऐसे में फर्मेंटेशन खाने में शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन बैक्टीरिया या कोई कोई भी फंगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो
0: शुरू
1: जाती
0: हो
1: है।
0: जाती जी।
1: तो ऐसा खाना यदि आपको लगता है कि हम लोग 3-4 घंटे तक नहीं खा पा रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर फ्रिज में या ऐसी जगह पर रखें जिससे कि वो ढक के रखें। तो शादी ब्याह में ऐसे अब खाने जा रहे हैं तो खासतौर से ऐसा खाना जो कि वो खुले में रखा हुआ हो और जिसमें कि आपको लग रहा है कि बहुत दिन से टाइम से बन गया हो, तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाना
0: नहीं
1: चाहिए।
0: खाना चाहिए उसमें, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या चलते चलते बताएंगे इसमें बरसात के मौसम में, थोड़ा सा जैसा होगा कि खुले में जैसे कई बार पानी भर जाते हैं, आसपास रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो वहाँ से चीज़ें आने वाली हैं वो हमको ज़रूर प्रभावित
1: हाँ
0: करती है, चाहे वो
1: तो
0: मच्छर हो चाहे वो इन्फेक्शन हो, तो अपने आसपास अपने परिवेश में साफ सफाई की बात तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कितनी हमारे समाज के लिए और हमारे लिए
1: हाँ यदि
0: लाभदायक हैं?
1: आपका वातावरण और आसपास के आपके घर का वातावरण और सफाई है तो आप स्किन डिसीज जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियों में होती है, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, और जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो फ्रंकलोसिस आदि होता है तो उसको खुजला लेता है तो तुरंत ही पस्चुल मतलब पस पड़ जाता है उसमें, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आजकल यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरा स्केबिज बीमारी होती है वो कि इसी मौसम में फैलती है और पूरे घर में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सारे कपड़े गर्म पानी से उबाल कर धोकर रखें और कोशिश करें कि आप डेली नहाएं और अपने आसपास के एरिया को और पानी को आप दूषित होने से बचाएं।
0: जी। तो श्रोता बंधुओं, ये बात हम कर रहे थे डॉक्टर जैन साहब से, जो वरिष्ठ सर्जन सौसहिया अस्पताल वृंदावन में, और जानकारी दे रहे थे कि चाहे बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, या फिर कोई भी समय, लेकिन हमें सावधानी हमेशा ज़रूर रखनी चाहिए, अपने आसपास के परिवेश को साफ रखें, अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको रखी हुई ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। एक डॉक्टर साहब, फलों को लेकर उनको भी बड़ी वो है कि आजकल थोड़ा सा एहतियात ये बरतनी चाहिए कि जैसे बाज़ार से हम फल लाते हैं, कई बार हम सीधे खा लेते हैं, उसमें कई बार जैसे घर पे नहीं होती, भूख लगी होती है, तब कुछ भी खा लेते, तो ऐसे समय में खान पान को लेकर के थोड़ा सा क्या कहेंगे उसमें?
1: हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो मार्केट में फल आ रहे हैं वो तो ये देखना है कि ताज़े हैं या नहीं है, और यदि ताज़े के साथ साथ जो फल जो हैं आजकल जल्दी से जल्दी मार्केट में डिमांड की वजह से उनको कच्चे फलों को केमिकल से पकाया जा रहा
0: पका
1: है
0: दिया
1: पकाया
0: जाता है।
1: जाते जाता है और हम लोग आए और तुरंत ही छील के हम लोग को खाना चालू कर देते हैं, तो एक तो ज़्यादा पके हुए फल ना खाएं, जो भी फल खाएं वो उनको अच्छे ढंग से पानी में धोकर उनको खाएं और कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उनको पानी में डुबो कर और उनको रगड़ कर फिर आप खाएं तो उससे आपका स्वास्थ्य।
0: मतलब सिर्फ अपना साफ सफाई, बल्कि जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं वो भी स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो उपयोगी हो सकती हैं। चलते चलते कुछ और कहना चाहें?
1: बस मैं ये कहकर नहीं जाऊंगा कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ भोजन आपका करें जिससे कि आपका पूरा जीवन जो है वो सही रहे। हाँ
0: खुश रहे,
1: हाँ
0: और ये डॉक्टर साहब की सलाह है और नेक सलाह है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जल्दी में हम ऐसा भी करते हैं कि बिना हाथ धोए खा लिए, तो साफ सफाई परिवेश की हो, स्वयं की हो, या खान पान की जो

0: चीज़ें उनकी हो बहुत आवश्यक है, और बहुत सारी चीज़ें
1: इसमें
0: इनसे
1: इस
0: भी
1: चीज
0: आ
1: में एक
0: जाती
1: और बात कहना चाहूंगा कि हैंड वॉश जो है,
0: जी
1: हाथ धोने की विधा जो है, उसकी भी सरकार बहुत जोर दे रही है।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: हाथ धोना बहुत जरूरी है, और हाथ धोने के 5 स्टेप होते हैं।
0: जी
1: इसलिए यदि आप अपने बहुत से मतलब कोई बिना खर्चे के एक साबुन से आप हाथ धोते हैं, तो
0: हाँ,
1: उससे भी आप कम से कम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
0: कम से कम 2 बार 3 बार जब खाना खाते हैं तब तो हम धो ही सकते
1: और
0: हैं
1: बाहर
0: हाथ
1: से
0: को।
1: कार क्षेत्र से आते हैं तो तुरंत हाथ धोएं आप।
0: जी, तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे, अपनी जानकारी में रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेंगी। डॉक्टर साहब, आप आए और जानकारी दी हमारे श्रोता बंधु के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप अभी सुन रहे थे ये स्वास्थ्य वार्ता, बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियां। डॉक्टर संजीव जैन से बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम,
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
1: बस्ती के एक युवा की पहल ने केवल ऐतिहासिक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बन गई। बस्ती के आकाश गुप्ता की यह उपलब्धि आज जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बस्ती जिले के हरैया तहसील के लजघटा गांव के युवा आकाश गुप्ता को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। भगवान राम के प्रतिष्ठ यज्ञ स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक मनोरमा नदी के संरक्षण के लिए किए गए उनके अभियान को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहा था और अब उन्हें 15 अगस्त के समारोह में आमंत्रित किया गया है। बस्ती जिले के युवा आकाश गुप्ता ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। लगातार 4 महीने तक श्रमदान कर टीम ने करीब 400 मीटर तक नदी की सफाई और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। आकाश और उनकी टीम के इस प्रयास की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्य की सराहना करते हुए जन भागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बताया था। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए आकाश गुप्ता को आधिकारिक निमंत्रण पत्र पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने सौंपा। इसके बाद आकाश गुप्ता की टीम के साथ गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस संबंध में आकाश गुप्ता ने बताया कि
2: जब हमने ये सफाई का अभियान शुरू किया था तब से लेकर आज तक हमें 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 134वें एपिसोड में हमारी नदी सफाई अभियान का उसमें जिक्र किया और राष्ट्रपति जी ने भी हमें एट होम रिसेप्शन में इन्वाइट किया। उसके लिए हमें दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना करते हुए इतना हमारे लिए किया, हमारे लिए ये गर्व की बात है और हम लोग चाहेंगे हम लोग ऐसे ही और आगे काम करते रहे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे।
1: बस्ती के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बस्ती जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड और इमरजेंसी वार्ड समेत एक्सरे विभाग का भी निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों का मंत्री ने हाल भी जाना। इस दौरान श्री शाही ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बस्ती चिकित्सालय में लैब आम आदमी को निशुल्क जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर हो सके। बस्ती जिले की पुलिस ने 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया।

0: की सर्विलांस सेल द्वारा लगातार चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न कंपनियों के कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से कटान भी तेजी से हो रही है। नदी किनारे लगे कई पेड़ नदी में समाहित हो गए हैं। गांव वालों ने चिंता व्यक्त की है। दर्जनों गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने सदर तहसील के ग्राम एहतमाली और बैराड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और राहत बचाव कार्यों में प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए। नाव राहत शिविरों और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधनों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने बाढ़ विभाग के तटबंधों और संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी करने का निर्देश देते हुए जल स्तर बढ़ने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। बस्ती जिले के बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सावन के पहले सोमवार को बस्ती जिले के प्रसिद्ध भदेश्वरनाथ धाम सहित जनपद के तमाम शिव मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर 7 अगस्त की शाम से 11 अगस्त की शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 बंद कर दिया जाएगा, जबकि कांवड़ियों के ठहरने खाने पीने के साथ समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था हेतु 12 जनपदों के साथ स्थानीय पुलिस PSC लगाई गई है। जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने भदेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन सजग है और व्यापक व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया कि
1: कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पहले से ही सजग है, तो निरंतर हमारी व्यवस्था चल रही है। जहाँ जहाँ पे हमें कमी मिलेगी उसको हम तुरंत के तुरंत ठीक का काम कराएंगे।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
3: श्रद्धा साधना शिव भक्ति में सावन का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन माह के प्रथम सोमवार को जनपद के प्राचीन संगमेश्वर, पतालेश्वर, मनासेश्वर, मतंगेश्वर शिव मंदिरों में भक्त सुबह से भक्तों का सैलाब मोड़ते हुए लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बेल पत्र, चावल, घी, धतूरा, फल, शहद, दूध, जल से जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अगले 5 वर्षों तक यानी 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाए जाने पर जनपद हमीरपुर का किसान खुशी जाहिर की है, क्योंकि खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों को प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 4 मई में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रमोद कुमार कहते हैं कि
4: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 2,13,460 किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि जिसका लैंड रिकॉर्ड की लैंड सीडिंग नहीं हुई है उसको पूरा करा लें। आपके जैसे पति पत्नी दोनों पा रहे हैं तो उसमें से एक का सरेंडर कर दें और अगला फिर वो चालू हो जाएगा। उनका आधार सीडिंग करवा लेंगे तो आपके वो डेटा बिल्कुल सत्य हो जाएगा और आपकी जो रुकी हुई किस्त आने लगेगी।
3: जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर सुमेरपुर ब्लॉक के दरियापुर गांव में जिला ग्रामोद्योग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन कर पारंपरिक माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को आधुनिक तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा रोजगार से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज शुक्ला कहते हैं कि
5: वर्ष 2017 में इसका बोर्ड का गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसका नवा स्थापना दिवस भी मनाया गया है। इसमें जनपद को शासन स्तर से जो भी आवंटित होते हैं, जैसे विद्युत चालित चाक, ये इस बार 25 का टारगेट आया हुआ, 20-25 का टारगेट आता है। हम लोग की जो राज्यता में कमेटी गठित होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी प्राप्त होते हैं उनको निःशुल्क चाक 25 का टारगेट 25 वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग समय समय

0: जिसकी ट्रेनिंग निर्धारित है, हमारे यहाँ जनपद कालपी में ट्रेनिंग सेंटर है, तो आधुनिक वर्तनों का निर्माण कराना, जागरूक कराना, इस हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, इस पर हम लोग आने जाने का भय देते हैं, निःशुल्क स्टॉल आवंटित कराते हैं, तो सोसाइटी का गठन कराते हैं, ये भी निःशुल्क हम लोग दिलाई जाती है।
1: कार्यक्रम के अंत में माटी कला उत्पादों का प्रदर्शन कराया गया और प्रचार सामग्री वितरित की गई। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से बढ़कर 17,000 प्रतिमाएं किए जाने और कैशलेस सुविधा मिलने से क्षेत्रों में तैनात अनुदेशकों में खुशी की लहर है। अनुदेशकों का कहना है कि इस बढ़े हुए मानदेय और एरियर से उनके सपनों को उड़ान मिलेगी, क्योंकि पहले सीमित मानदेय के कारण घर का खर्च चलाना बेहद कठिन था, अब मानदेय बढ़ने से बड़ा संबल मिला है। जनपद हमीरपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया, जहां 160 जोड़ों ने विधि विधान के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ जीवन बिताने का प्रण लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखी जीवन की मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अत्यंत कमजोर गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो सामरिक समरसता को सुदृढ़ करती है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: बजने दे जरा। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत ये जानकारी। वनों का विनाश और हमारा पर्यावरण धर्म, और इस विषय से संबंधित जानकारी दे रहे हैं रघुनाथ मिश्र।

सभ्यता के विकास से पूर्व भी वनों के संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन की स्वाभाविक समझ की जानकारी पौराणिक ग्रंथों इतिहास शोध ग्रंथों आदि में स्पष्ट मिलती है। राहुल शांकृत्यायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा एक प्रख्यात उपन्यास आदि विद्रोही के नायक दुनिया का अंतिम गुलाम स्पार्टकस के जीवन वृत्त व तत्कालीन सभ्यता परंपराओं में भी इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सर्वोदय आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण आदि से जुड़े संगठनों व्यक्तियों की भूमिकाओं से भी वन संरक्षण के लाभ और विनाश के दुष्परिणामों से अवगत हुआ जा सकता है। टिहरी बाग परियोजना ऐसा ही एक उदाहरण है जिस पर वन संपदा के नष्ट होने के मद्देनजर विरोधी स्वर मुखर हुए थे। चिपको आंदोलन के महानायक सुंदरलाल बगुड़ा पेड़ों वनों की रक्षा को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने असंख्य पेड़ काटने से रोकने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वे काटे जाने वाले पेड़ से चिपक कर अहिंसक आंदोलन चलाते थे और स्पष्ट कह देते थे कि आरी कुल्हाड़ी जो भी चलानी है पहले मुझ पर चलाओ, मुझे काटो मारो, मेरे जीते जी मैं कोई भी पेड़ नहीं काटने दूंगा। टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध उनका आमरण अनशन भी इस महत्ता की पुष्टि करता है। प्रागैतिहासिक काल में और आदिम काल में वन ही घर हुआ करते थे। वनों में मनुष्य भी अन्य वन्य जीवों की तरह अपना बसेरा बनाते थे और वहीं से उन्हीं की तरह अपना आहार भी जुटाते थे। पेड़ों की छाल पत्तियां फल कीड़े मकोड़े आदि से पेट भरते थे और सामान्य जीवन जीते थे। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक काल में अपनी नग्नता ढकने के लिए पत्तों का सहारा लेने की दिलचस्प जानकारी हमें सभ्यता विकास के इतिहास में मिलती है। रामायण युग में भगवान राम द्वारा सीता को वन भेज देना और वन में स्थित फूस पत्तों खर पतवारों वन सामग्री से निर्मित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का सीता

के आश्रय बनने की कथा और वन में ही लवकुश के जन्म व परवरिश की कहानी साफ संदेश देती है कि वनों का विनाश हमारे अस्तित्व का विनाश और उनकी सुरक्षा संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन हमारा धर्म है, हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारी सभ्यता संस्कृति सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी आत्मरक्षा है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भी सीता के वन पंचवटी में आश्रय का उदाहरण भी प्रकृति प्रेम वनों की महत्ता को दर्शाता है। यदि कहा जाए कि वनों के विनाश से मानव सहित प्राणी मात्र का विनाश अवश्यंभावी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सत्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों, पर्यावरणविदों के गहन अध्ययनों, मौसम विज्ञान व अन्य अनेकों शोधों अनुसंधानों से निर्विवाद सिद्ध व पुष्ट हो गया है। हमारा पर्यावरण धर्म, हमारी सभ्यता समझदारी नैतिकता हमें वनों के विनाश की नहीं रक्षा की प्रेरणा देती है। बड़ी व्यवहारिक बात है कि वनों के कारण वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की आजीविका चलती है। प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल सहित अनेक टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के विभिन्न महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक सूचना परक कार्यक्रम हम तक पहुंचते हैं और इस तरह इनसे असंख्य मीडिया कर्मियों की आजीविका चलती है। अब आप कल्पना करें कि यदि दुनिया वनों के विनाश की ओर बढ़ेगी तो वनों पर आधारित असंख्य सरकारी गैर सरकारी परियोजनाओं का भविष्य का क्या होगा, जो हमारे स्वस्थ जीवन की गारंटी के साथ साथ हमारी बड़ी आय के साधन ही नहीं बल्कि हमारी प्राणवायु बन चुके हैं। अनेक कल कारखानों, जरूरी उत्पादक संस्थानों के संचालन भी वनों के विनाश के साथ ठप हो जाएंगे। परिणामतः इनसे जुड़े असंख्य कामगारों व उनके परिजनों को बेरोजगारी, कुपोषण, मौतों का शिकार होना पड़ेगा। वनों में चंदन, तुलसी, रुद्राक्ष, बादाम जैसी असंख्य वनस्पतियां व वृक्ष आदि हैं, जो असंख्य प्रकार की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी औषधियों की आवश्यक तत्व हैं। वनों के विनाश से बीमारियों की रोकथाम कठिन ही नहीं असंभव होगी। तब हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे बचेंगे? तो आइए हम वनों के विनाश को रोकें, सुखद व सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करें, विकास के मार्ग प्रशस्त करें और अपना असली धर्म अर्थात पर्यावरण धर्म निभाएं।

कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रघुनाथ मिश्र से ये जानकारी। विषय था वनों का विनाश और हमारा पर्यावरण धर्म। श्रोता साथियों, आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज प्रस्तुत है गांधी चर्चा के अंतर्गत भारत देश पर गांधी जी के विचार।

प्रस्तुत हैं भारत देश पर गांधी जी के विचार। भारत मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा देश है, इसलिए नहीं कि वह मेरी मातृभूमि है, बल्कि इसलिए कि मैंने सबसे ज्यादा अच्छाई इसी में पाई है। भारत की हर चीज मुझे आकर्षित करती है। भारत के पास वह सभी कुछ है जिसकी उच्चतम आकांक्षा की जा सकती है। भारत कर्म भूमि है, न कि भोग भूमि। यदि हम हिंसा किए बिना मरने का पाठ सीख लें, तो भारत जो दंत कथाओं और इतिहास में कर्म भूमि कहा गया है, पृथ्वी पर स्वर्ग बन सकता है। यदि भारत हिंसा के मार्ग पर चलता है, तो भारत में रहना मुझे नहीं भाएगा, तब मुझे भारत पर गर्व नहीं होगा। मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से ऊपर नहीं है। मैं भारत से उसी तरह चिपका हूँ जैसे बच्चा माँ के सीने से चिपका रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मुझे वह आध्यात्मिक पोषण देता है जिसकी मुझे आवश्यकता है। भारत में वह वातावरण है जो मेरी सर्वोच्च आकांक्षाओं के अनुकूल है। जब वह विश्वास उठ जाएगा, तब मुझे लगेगा कि मैं अनाथ हो गया हूं। मेरा पक्का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि हम इस संतप्त देश को केवल सदाचरण से, यानी दूसरे शब्दों में सत्य और अहिंसा द्वारा ही सुखी बना सकते हैं। मैं विनय पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यदि भारत सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका, तो विश्व शांति में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। सभी देश विश्व शांति के लिए तरस रहे हैं। इस काम में सहायक बनकर भारत अन्य देशों की मुफ्त सहायता का थोड़ा बहुत बदला दे सकेगा। मैं हृदय से महसूस करता हूं कि दुनिया खून खराबी से आजिज आ चुकी है। दुनिया इससे उबरने का रास्ता खोज रही है। मुझे अपने इस विश्वास पर गर्व होता है कि तड़पती दुनिया को रास्ता दिखाने का श्रेय इस प्राचीन देश भारत को ही प्राप्त होगा। मेरा विश्वास है कि यदि भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है, वह दुनिया में किसी से पराजित नहीं होगी। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। भारत का लक्ष्य पश्चिम के रक्त रंजित मार्ग से नहीं, बल्कि शांति के रक्तहीन मार्ग से प्राप्त हो सकता है। यह शांति सरल और दिव्य जीवन से मिलती है। पश्चिम अपनी हिंसा के मार्ग से खुद ऊब चुका है। खतरा है कि कहीं भारत की आत्मा मर न जाए। वह उसे खोकर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे आलस्य या निराशा से यह नहीं कहना चाहिए, मैं पश्चिम के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता, लेकिन भारत को स्वयं अपनी खातिर और इस सारी दुनिया की भी खातिर इतना मजबूत होना चाहिए कि वह उसका विरोध कर सके। ये थे गांधी जी के भारत देश पर विचार। अब आइए सुनते हैं डीबी पलुस्कर की आवाज में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। इस क्रम में आज आपने सुना कड़ी संख्या इसकी 43वीं। प्रस्तुति आगरा केंद्र की थी और भारत देश पर गांधी जी के विचार को अभी हम सब ने सुना। कार्यक्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं और सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं कुछ गजलों का। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। एक अजनबी जो गैर था गम भी साथ था। आइए सुनते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की इस रचना को सुनील गोस्वामी की आवाज़ में।

हारे दिल, हारे दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, हारे दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, आप पूछें तो बताने में मज़ा आता है। आइए सुनते हैं ये रचना सुनील गोस्वामी की आवाज़।

हाले दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, आप पूछें तो बताने में मज़ा आता है। आप सुन रहे थे भी इस खूबसूरत सी गज़ल को सुनील गोस्वामी की आवाज़ में, और अब शकील बदायूनी साहब की इस खूबसूरत सी गज़ल को आवाज़ दे रही हैं बेगम अख्तर। यूँ तो हर शाम उम्मीदों में गुज़रती यूँ तो हर शाम उम्मीदों में गुज़र जाती थी, आज तो कुछ बात है जो इस शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया।

यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज तो कुछ बात है जो इस शाम पे रोना आया। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे शकील वदानी साहब की इस खूबसूरत सी रचना को, यानी गज़ल को, मलका तरन्नुम बेगम अख्तर साहब अख्तर की आवाज़ में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम का यह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: आपने अभी सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में काजल फिल्म के इस गीत को। लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था संगीतकार रवि कुमार शर्मा ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

आपने अभी सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मैं सुंदर हूँ, इस फिल्म का गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। अब आइए सुनते हैं साथियों ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म लवर्स का ये गीत। लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी वर्मन का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र से।

आप अभी सुन रहे थे शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वो सात दिन का ये गीत। और साथियों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में आपने सुना भी तलाश फिल्म के गीत को। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

आप अभी सुन रहे थे फिल्म द जेंटलमैन का ये गीत चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम साथियों की आवाज़ में। गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब ये अगला गीत।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में विरासत फिल्म के गीत को। साथियों, हम आपको बता दें कि आप जो कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से सुनते हैं हेलो आकाशवाणी, तो वो कार्यक्रम आप सुनेंगे जब ये 11:10 से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जो कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर इसका सीधा प्रसारण होगा, तो इस कार्यक्रम के समापन के बाद ही आप सुन सकते हैं।

ओम शांति ओम। आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को सोनू निगम की आवाज़ में। और साथियों, अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

साथियों, आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि फोन इन कार्यक्रम जो कि प्रसारित किया जाता है पूर्वाह्न 11 बजे, तो अभी एक कार्यक्रम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है हथकरघा दिवस पर, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जो है सीधा समारोह, उसका सीधा प्रसारण, तो उसके बाद इस कार्यक्रम के समापन के बाद ही आप एक फोन इन कार्यक्रम सुन सकते हैं।

आप अभी सुन रहे थे रूपकुमार राठौर की आवाज़ में बॉर्डर फिल्म के इस गीत को। लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the award selection committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार

0: विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic

0: significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी का विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित हैं। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण हैं।

0: करघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Viraje Vishisht Atitigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh Ka Shubharam Hum Sarvapratham Deep Prajwalan Ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द हैंडलूम फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्री लीडर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर।

0: भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट इंडिया नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। द हैंडलूम सेक्टर, अ कस्टोडियन ऑफ आर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो
2: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 1.5 लाख वीवर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड ऑन टू द इंडिया हैंडमेड ई मार्केटप्लेस। हैंडलूम हार्ट्स, कॉटेज, कुंज have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. वीव द फ्यूचर के तहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिजाइन टूल्स, उनके द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल मोटिव्स को रीइमेजिन करने की चेष्टा और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल्ड डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। QR बेस्ड ऑथेंटिकेशन would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मैं आप सभी को अपना सिंसियर एप्रिसिएशन देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए

0: गाने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है। आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म वेलकम एड्रेस। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
1: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
0: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें।
1: और अब 12वें राष्ट्रीय
0: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
1: माननीय राष्ट्रपति
0: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबफ्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद

0: 外套账。हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मसलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sadi. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari. Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl. And Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi. Shri Abhinavo Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi. Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi. Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sadi. And Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025. And she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, Al Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Choudhury.
1: All right, Assam. Time to get and one NRI task done.
0: Weaving.
1: What?
0: And,
1: you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Jamalani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi.
2: And
0: we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा आपकी सादगी संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है द ट्रू क्रेडिट फॉर द एंड्यूरिंग लेगेसी एंड ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस बिलोंग फर्स्ट to our generations of weavers and artisans who have preserved these priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji,

0: and through the dedicated efforts of the Secretary of Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation, and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aye hum sab milkar ye sankalp le ki hamare bunkaron ko samman, pehchan aur naye avsar nirantar milte rahe tatha hamare bunkaron dwara buna gaye pratyek dhaga vikshit Bharat ke sapne ko aur adhik sashakt kare. Dhanyawad, Jai Hind.
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद. और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को. माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
2: भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे. आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं. मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं. जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया. नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं. ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी

0: को तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: And we are bringing you the National Handloom Awards.

0: देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: And we are bringing you the National Handloom Awards from the Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Sri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh. और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख। आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है। अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं, संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे? तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा। ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान

0: नहीं था। मुख्य कानून चौथा, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे, लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया। 35 लाख आए, लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम, 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किए हैं, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा, AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है, लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है, वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है पंचलखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजा राज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुनाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षण भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो

0: सहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजी आसीओ छी नुआ जुगांतर गांधी कहिछंती बुली बारबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, फिर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो शॉप है, हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजन, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालन आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवियों और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय

0: बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सराव और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवा एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

0: इस विशेष समारोह से। आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शहस्यार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।

हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार सर। मैं गिरीश बोल रहा हूँ, गांव मनोपुर से।
1: गिरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया हाल चाल है। आज का ठंडा मौसम हो गया है और गर्मी बहुत तेजी पड़ रही है।
1: हाँ, उमस वाली गर्मी है इन दिनों। बारिश हो रही है आपके यहाँ?
0: नहीं, सर बारिश नहीं हो रही है, बादल हो रहा है बहुत जोर से।
1: अच्छा, खेती बाड़ी में क्या काम चल रहा है?
0: जी मैं सर, अभी गोभी की पौध धरी हुई है, बैंगन चल रहे हैं, गोभी की पौध धरी है, पत्ता गोभी बनाएंगे।
1: अच्छा, आज क्या फरमाइश है कार्यक्रम में हमारे?
0: आज फरमाइश हमारे आई मिलन की बात करना है।
1: जी
0: सावन का महीना आया है सर जी। हमारे दोस्त हैं, उनके जो नाम बता दूं,
1: बताइए।
0: हमारे श्यामवीर भाई साहब हैं, उनके भाई साहब हैं, किराना स्टोर से भैया जी हैं।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद सर जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार
1: जवाहर सिंह, गांव सहपुर से सिग्नल पे राजस्थान से कर रहा हूँ।
0: जवाहर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है साहब, आपकी बढ़िया रहने की कामना करते रहते हैं हर समय। हाँ
0: जी, धन्यवाद आपका। और सब ठीक चल रहा है?
1: सब ठीक चल रहा है, बरसात वरसात हो गई है, अच्छी फसल है।
0: जी, कार्यक्रम सुन ही रहे हैं हमारा आप?
1: मैं लगातार कार्यक्रम सुनता हूँ आपका।
0: जी, आज बताइए क्या पसंद रहेगी?
1: मिलन फिल्म का गाना है, युग युग से गीत मिलन के गाते रहेंगे, गाते रहेंगे,
0: सुनवाते हैं जवाहर सिंह जी आपकी पसंद का ये गीत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार। बराए से नक्ते पर से मैं देवी सिंह बोल रहा हूँ।
0: देवी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: हाँ जी,
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर।
0: आपका
1: आप
0: कारोबार
1: कैसे
0: कैसा
1: हो?
0: चल रहा है?
1: बढ़िया है सर, दुकान चल रही है बढ़िया।
0: अच्छा, हम भी ठीक हैं यहाँ। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: बागों में झूले करके टूर आया, परदेसी दुकान आया था।
0: अच्छा, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। शुक्रिया
1: ठीक है
0: आपका
1: सर।
0: बहुत बहुत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बिली जिला सागर मध्य प्रदेश आपके निमित्त श्रोता लक्ष्मण जयपाल चाय वाले चाय पीलो। सर कैसे हो आप?
0: लक्ष्मण जी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत।
1: धन्यवाद सर।
0: चाय खूब बिक रही है आपकी?
1: हाँ बिक रही है, आप आओ पीने के लिए।
0: आप समझ लीजिए हमने पी ली, आपने कह दी तो।

0: इसी से
1: हाँ सर
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारा?
1: हाँ सुनते रहते हैं सुबह शाम रात को सब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आज बताइए क्या पसंद रहेगी?
1: हाँ थी मेरे साथ ही, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: खुश रहना मेरे यार।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो
1: आदरणीय सारस्वत साहब को मेरा बड़ा नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: सर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पास है सर, काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ।

0: प्रयास तो करना पड़ता है, तभी तो सफलता मिलती है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: और सर आप कैसे, हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
0: सब बढ़िया है, दुआएं हैं आप लोगों की, प्रभु की कृपा है।
1: चलो हम भी आपके शास्त्र से आप कामना करते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से, आप ऐसे ही बने रहे हम और आप
0: जी,
1: और आकाशवाणी के आप प्रोग्राम सुनवाते रहे सर।
0: जी जी, हमारी भी यही इच्छा है कि आप स्वस्थ बने रहे, हमसे बातें करते रहे।
1: जी जी, बहुत आनंद आता है सर आपसे बात करने में।
0: जी जी, आज बताइए क्या फरमाइश है कार्यक्रम में।
1: सर जी देखो, सावन का महीना चल रहा है सर, ये पवित्र महीना है और वैसे भी सिर्फ भक्तों की शिव जी के लिए आराधना हो रही है, गंगा जल भी चढ़ रहा है आकर गिर रही है, और वैसे भी सर भाई बहन का पवित्र त्योहार है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हमें गाना सुनवा दे सर। आया सावन झूम के, बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मच गई धूमरे, आया सावन झूम के। सर मैं दो अपने नाम ले सकता हूँ, दो चार साथियों के सर आप इजाजत हो तो?
0: जी जी बताइए।
1: सर हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, और सर शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, सर राजू लवानिया जी हैं, बीरेन जी हैं, और सामलिया जी हैं राजस्थान से।
0: बिल्कुल, आप सभी के लिए सुनवाते हैं ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
0: राधे राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ।

0: डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस.
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ.
2: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम. टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट.
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है. आइए सुनते हैं मल्हार गायन. कलाकार है राधा दीक्षित.

0: आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अभी आप सुन रहे थे मल्हार गायन, कलाकार थी राधा दीक्षित। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। विधानमंडल समीक्षा आप सुन सकेंगे रात्रि 8:20 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। इसमें विज्ञान वार्ता प्रसारित की जाएगी, पेस्ट कंट्रोल, पर्यावरण संरक्षण की जरूरत। वार्ताकार होंगी निधि शर्मा।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, एक खूबसूरत इत्तेफाक प्रस्तुति शारिका शेख की होगी।

संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज नव कथा मोहिनी। कथाकार होंगे नरेंद्र आत्रेय।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:50। इसमें जब सुनेंगे वार्ता धान की फसल में कीट प्रबंधन, वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशांत कुमार।

व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम नवरंग का समय होगा रात्रि 9:15।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम? टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: है पर छुट्टियां है कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमन एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलिडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: अब भरो सक्सेस की उड़ान।

0: इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

वनिता लोक सुनने वाली सभी बहनों को उनकी सहेली भावना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। तो बहनें कैसी हैं आप लोग? आशा है सभी अच्छी होंगी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप चर्चा के साथ हम आपसे बात ही करते हैं शुरुआत में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं विश्व हथकरघा दिवस, जिसे कि नेशनल हैंडलूम डे भी कहा जाता है। यह दिन भारत के हथकरघा बुनकरों और उन सभी लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने हैंडलूम को अपने निजी व्यवसाय बना करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी दी। यह उनके योगदान को याद करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यह कार्य या व्यवसाय एक ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है। यह दिन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था, जब पहला हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। हमारे देश में लाखों बेरोजगारों को उद्योग करने का अवसर मिला, बुनकरों की कला को एक वैश्विक पहचान मिली। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को ना उपयोग में लाने और उसका बहिष्कार करने और देश में बने हथकरघा तथा खादी उत्पादों को अपनाना था, जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास हो। यह दिन देश के लाखों हथकरघा कारीगरों और बुनकरों की मेहनत को पहचान दिलाता है। हथकरघा क्षेत्र से जुड़े कुल श्रमिकों में 70% महिलाएं ही हैं जो इस कार्य में लिप्त हैं। ये भारत की पारंपरिक बुनाई कला जैसे बनारसी, पटोला, जामदानी और महेश्वरी सिल्क जैसी अनूठी कलाओं को जीवित रखने में मदद करता है। सदियों से बुनाई की कला और तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही है। कार्य करने से आत्मनिर्भरता तो आती ही है। भारत में पुरानी कला परंपराओं का उत्सव भी मनाया जाता है और यह आज भी बाहर के लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और सराहा जाता है। हथकरघा बुनाई के आसपास का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है और होता ही रहेगा। समकालीन डिजाइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां भारतीय बुनाई को नए उपभोक्ताओं से जोड़ रही हैं। भारतीय हथकरघा जनगणना 2019 और 20 में लगभग 31.45 लाख हथकरघा परिवारों को इसमें दर्ज किया गया था। तो अतः हमारा देश और आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब छोटे छोटे लघु उद्योग में लगकर जो बेरोजगार हैं वे अपना व्यापार चलाएं और स्वावलंबी बने। तो बहनों, ये थी हमारी आज की

चर्चा जिसका विषय था विश्व हथकरघा दिवस। तो आइए अपने कार्यक्रम को और मनोरंजक बनाएं और सुने ये गीत।

0: बहनों, चेहल्लुम पर्व इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसकी विशेष धार्मिक मान्यता है और इसे अरबीन भी कहा जाता है। इसको शहीदे करबला की याद में मनाया जाता है। मान्यता ये है कि दसवीं मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों के 24वें दिन पर ये पर्व पड़ता है। इमाम हुसैन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासी थे। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार चेहल्लुम सफर के 20वें दिन मनाया जाता है। अलग अलग देशों में यह अलग अलग दिन पड़ता है। शहादत के रूप में मनाया जाने वाला चेहल्लुम साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। चेहल्लुम के दिन लोग मज़ार पर इकट्ठे होकर के हज़रत हुसैन की शहादत की कहानियाँ सुनते और सुनाते हैं। बहनों, अब हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण, जो कि आज की पहली आवश्यकता है। इसके चलते हमारे पेड़ पौधों को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। पेस्ट कंट्रोल यानी जहरीले रसायन, कीटनाशक मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। जैविक तरीकों से कीटों को नियंत्रित करने से उपयोगी जीव सुरक्षित रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। तो आइए, बारी है आपको एक विज्ञान वार्ता सुनवाने की। विषय है पेस्ट कंट्रोल, पर्यावरण संरक्षण की जरूरत, और वार्ताकार हैं निधि शर्मा।
1: मेरी प्यारी बहनों, हमारी आज की वार्ता का विषय है पेस्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल एक अंग्रेजी शब्दकोश से है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कीटनाशक नियंत्रण। आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और इसका समाधान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रदूषण के कारण ही हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अर्थात कहें कि प्रदूषण का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रादुर्भाव है, परंतु पेस्ट कंट्रोल के द्वारा हम इस समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। आखिर पेस्ट कंट्रोल क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बताया, परंतु असल में अगर आम भाषा में बात करें तो यह एक दवाई है जो भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल यानी रसायनों का मिश्रण है, और इनका प्रभाव एक निश्चित समय तक ही रहता है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात इनकी पुनः आवश्यकता पड़ती है और यह हमें नियमित रूप से कराने पड़ते हैं। पेस्ट कंट्रोल की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और उसमें रसायन भी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, साथ साथ उसकी मात्रा की मिश्रण भी अलग अलग होता है, और यह इन बातों पर निर्भर करता है कि हमें पेस्ट कंट्रोल कितनी जगह, किस जगह और वहां पर किस प्रकार के कीड़ों की अधिकता है, क्योंकि सभी प्रकार का अध्ययन करके ही पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कि घर में कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर आदि की गर्मियों में अधिकता हो जाती है, तो आप पेस्ट कंट्रोल करा सकते हैं। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में नहीं हो तो आप अपने घर को कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा ही पेस्ट कंट्रोल कर सकती हैं। चींटी को दूर रखने के लिए जमीन व दरवाजों के किनारों पर कोई दरार न रहने दें। सफाई के लिए पानी में सिरके को मिलाएं, इससे भी चींटे चींटियां दूर रहेंगे। अंडे के छिलके घर के बाहर रखने से घर में छिपकली नहीं घुस पाएगी। आधी कटी प्याज के रखने से उसके आसपास कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। मक्खियों को दूर भगाने के लिए संतरे के छिलकों को खुले में रख दें। नमी या पानी वाली सभी जगहों को अच्छी तरह साफ कर दें, क्योंकि इन्हीं से बीमारियां होने का डर रहता है। अगर कोई कीड़ा काट ले तो उसका डंक निकालने के लिए प्रभावित

चेहरे पर थोड़ा घी लगाकर लोहे की चीज को रगड़ दें। कारपेट के नीचे नीम की पत्तियां रख लें, ये नमी सोखकर कीड़ों को दूर रखेंगी। सूखे नारियल के खोल को जलाने पर उसके धुएं से भी मच्छर गायब हो जाते हैं। आप कपूर का भी प्रयोग कर सकती हैं, क्योंकि कपूर में सल्फर पाया जाता है जो कि कीड़ों को दूर रखने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व पाए जाते हैं। अपने घर पर कपूर की 2-3 गोलियां जलाएं, जिससे आपके छोटे मोटे कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा। कीड़े मकौड़े आपके घर के अनचाहे मेहमान होते हैं, उन्हें भगाने के लिए आप अभी जो मैंने कुछ टिप्स दिए हैं उनको प्रयोग में ला सकती हैं। परंतु इनसे अगर लाभ ना मिले तो फिर आपको पेस्ट कंट्रोल के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट ही राय दे पाएगा कि पेस्टिसाइड की कितनी मात्रा, कौन सा पेस्टिसाइड कहाँ व कितना प्रयोग होगा। परंतु कराने से पहले आप उस एजेंसी के बारे में पूर्ण रूप से पता कर लें, क्योंकि बाजार में विभिन्न कंपनियां उपस्थित हैं। संपूर्ण जानकारी के बाद ही अपने घर में आप पेस्ट कंट्रोल कराएं, और अगर किसी परिचित ने काम कराया हो तो उसके अनुभव के बारे में जान लें। पहली नज़र में तो आपको यह महंगा सौदा लगेगा, परंतु यह अधिक समय तक कारगर रहता है, या ये कहें कि लंबे समय के नज़रिए से ये काफ़ी सस्ता सौदा साबित होगा। परंतु ध्यान रखें कि आम तौर पर जेन्युइन पेस्ट कंट्रोल एजेंसी इंडियन पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन की सदस्य होती हैं, तो उनसे सभी जानकारी पूर्ण विवरण के साथ लें कि वह ट्रीटमेंट में कौन सा मटेरियल प्रयोग करेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अवश्य पूछें, और यह सुनिश्चित करें कि बोतल पर लेबलिंग पूरी हो और उन्हें घर के प्रयोग के लिए बनाया हो, ना कि इंडस्ट्रीज के प्रयोग के लिए। एक अच्छा पेस्ट कंट्रोल आपको यह भी बताएगा कि यह केमिकल क्यों प्रयोग कर रहा है। याद रहे कि दीमक से छुटकारा पाने के लिए आपको सारे फर्नीचर पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इससे हम अपने फर्नीचर का दीमक से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे घरों में लकड़ी के फर्नीचर की अधिकता है और यह महंगा भी बहुत होता है, और दीमक अगर एक जगह लग जाए तो वो आपके सभी फर्नीचर को खोखला कर देती है। तो प्रत्येक घर में यह उपचार तो आवश्यक ही है। ये तो बात हुई पेस्ट कंट्रोल की उपयोगिता की, परंतु इसका एक और भी पहलू है, पेस्ट कंट्रोल यानी कीड़ों को मारने की दवाई, या साफ शब्दों में कहें तो जहर, क्योंकि इन केमिकल्स में कहीं ना कहीं कुछ रसायनों की मात्रा ऐसी होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आज हम जो भी खाते हैं वो सभी खेत खलिहानों से ही आता है। आप सभी को जानकारी होगी कि पहले जमाने में, या फिर कहें कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले, हमारे किसान भाई खेती सिर्फ जैविक विधि द्वारा करते थे और उनकी फसल भी बहुत अच्छी होती थी। परंतु कुछ वर्षों से खेती करने का तरीका ही बदल गया है। किसान आज जो अपने खेत में उगा रहे हैं उन सभी में वो भिन्न भिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, और उन रासायनिक मिश्रणों का प्रभाव उनकी फसल को अच्छा तो बनाता है, परंतु साथ साथ हानिकारक भी बनाता है। मिट्टी में भी रासायनिक मिश्रण मिल जाते हैं तथा उसमें जो फसल हो रही है वो उसको भी प्रभावित करते हैं। उससे उत्पादकता तो बढ़ती है परंतु क्षमता कम हो जाती है, वो मिट्टी खराब हो जाती है। और जिन कीटनाशक दवाइयों का हम पेस्ट कंट्रोल में उपयोग करते हैं, यानी खेतों में कीड़ों को मारने के लिए, अगर मैं प्रतिशत के रूप में समझाऊं तो मात्र 1% दवाई तो कीड़ों को मारने में प्रयोग होती है, परंतु 99% दवाई मिट्टी, फलों व पेड़ों पर चली जाती है, क्योंकि जब हम छिड़काव करते हैं तो वो पूरे खेत में होता है। तो सोचिए और गौर करिए, 1% से तो कीड़े मर गए, पर वो 99% हमारे लिए कितना घातक सिद्ध होगा भविष्य में, क्योंकि वही फल, सब्जी, अनाज आदि हमारे रोज के भोजन में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में जो अच्छा दिखता है वही बिकता है, परंतु कभी सोचा है कि अच्छे दिखने वाले उत्पाद में कितने रसायन भी आप अपने साथ घर ले आते हैं, जो आपके शरीर में बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। मैं आपको आज एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताती हूँ कि जब हमारे किसान जैविक विधि द्वारा यानी सामान्य संसाधनों से खेती करते थे तो हम अपने देश की जरूरत के हिसाब से काफी उत्पाद पैदा कर लेते थे, परंतु जब से ये पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लगा है तब से हम लगभग 70% अन्न आयात कर रहे हैं।
भारत कभी

0: किसानों का हरियाली से परिपूर्ण धरती का देश कहा जाता था, परंतु इसके प्रयोग से हमने अपने पर्यावरण को तो क्षति पहुंचाई ही है, साथ साथ अपने शरीर को भी क्षति पहुंचाई है, अनजाने में ही सही। जिस ड्रम में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए रसायनों को घोला जाता है, अमूमन उस ड्रम को आप एक साल तक किसी दूसरे काम में प्रयोग नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें तीव्र गंध आती है जो असहनीय होती है। तो सोचिए उसका असर कितने समय तक रहता होगा। हमारा ऐसा मानना है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम व शुद्ध, परंतु यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन्हीं रसायनों के कारण आज माँ का दूध भी रासायनिक मिश्रणों से भरपूर है। एक शोध के अनुसार शोधकर्ता ने कई माताओं के दूध का विश्लेषण किया, लेकिन जो जानकारी मिली वो हैराने वाली करने वाली थी। उस दूध में अपनी नियमित मात्रा से एंडोसल्फाम नामक रसायन 800% अधिक व क्लोरोपाइरोफॉस 400% अधिक पाया गया, जो माँ व बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। तो एक बार सोच विचार करके देखिए आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि एंडोसल्फाइम नामक पेस्टिसाइड की अधिकता से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बच्चों में विकलांगता व गर्भपात जैसी बीमारियों को खुला आमंत्रण है। जब यह पौधे पर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो नियमानुसार आप वहां 15 दिन के बाद ही जा सकते हैं। तो सोचिए ऐसे पेस्ट कंट्रोल से क्या फायदा जो हमारे पर्यावरण व हमारे शरीर दोनों को ही नुकसान पहुंचाए। परंतु ऐसा नहीं है कि पेस्ट कंट्रोल से नुकसान ही नुकसान है। अगर हम इसका सही मात्रा में व सही केमिकल्स का प्रयोग करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। परेशानी यह है कि विश्व में 60 से 70 प्रकार के पेस्ट कंट्रोल में प्रयोग आने वाले रसायन प्रतिबंधित हैं, परंतु इनका प्रयोग प्रतिबंध के बावजूद भी होता है। तो आवश्यकता है हमारे जागरूक होने की, क्योंकि अगर हम पूरे दिन के खाने के बारे में बात करें तो लगभग 400% एक्सेप्टेबल इनटेक से हम अधिक ले लेते हैं, परंतु अगर हम सभी रसायनों का ध्यानपूर्वक प्रयोग करेंगे तो अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे, और अगर हम यह कर पाए तो अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे। परंतु यह कार्य केवल एक व्यक्ति, एक समूह या किसी एक कंपनी के द्वारा नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए हम सभी को जागरूकता के साथ साथ एक साथ आना होगा। अपने किसान भाइयों को भी जागरूक करना होगा कि वह किस प्रकार इन रसायनों का प्रयोग करें जिससे उनकी खेती भी अच्छी हो, यानी उत्पादकता उनकी बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी, और किसान भाई भी पर्यावरण संबंधित सभी बातों को समझेंगे और इसी प्रकार हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्हें समझा पाएंगे। यह सभी एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर करेगा।
1: तो ये थी विज्ञान वार्ता, विषय था पेस्ट कंट्रोल, पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत, और वार्ताकार थी निधि शर्मा। तो जैसा कि इस वार्ता में भी आपने सुना ही होगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, कितना अमृत के समान है। तो बहनों, आपको हम बता दें कि हम विश्व स्तनपान सप्ताह के चलते ये जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवजात शिशुओं के विकास के लिए स्तनपान अमृत के समान है और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार होता है, जो कि बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है। माँ के दूध की हर बूंद में छिपा है सुरक्षा का विज्ञान। माँ का दूध बच्चे का सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि एक लिविंग फ्लूइड यानी जीवित द्रव है ये बच्चे के लिए, और जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जन्म के तुरंत बाद आने वाला गाढ़ा पीला दूध यानी जिसे कोलोस्ट्रम यानी नवजात का पहला प्राकृतिक टीका माना जाता है, इसमें IgA, IgM और ख़ास तौर से SLGA जैसे एंटीबॉडीज भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि बच्चे की आंतों, गले और नाक की अंदरूनी सतह पर इम्यूनिटी का अम्ब्रेला यानी सुरक्षा कवच का काम करते हैं। वायरस को भी शरीर से दूर रखते हैं, और एक चम्मच माँ के दूध में करीबन

20 लाख रोगाणु नाशक सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि संक्रमण से लड़ती हैं। तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कितना ज़रूरी हो, तो बच्चे को ज़रूर आप अपना दूध पिलाएं। तो बहनों, अब जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमने ये वार्ता सुनी और माँ के दूध के बारे में जाना, तो अब सुन लेते हैं एक गीत। तो चलिए सुनते हैं।

तो बहनों, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले हम देंगे कुछ घरेलू टिप्स। तो बहनों, सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर फर्श पे चींटी हैं तो बहुत ज़्यादा चींटी, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और अन्य सूक्ष्म खतरनाक जीव जो है घर में बेखौफ घूमने लगते हैं, क्योंकि ये बरसात का समय चल रहा है। तो अपने घर को एकदम साफ रखिए, आप पोंछे के पानी में सफ़ेद सिरका और नमक मिला दीजिए, और अगर बेड में भी ऐसे आपको छोटे छोटे चींटियाँ या खटमल नज़र आएँ तो भी आप नीम का तेल एक शीशी में भर के पेपरमेंट ऑयल मिला करके उस पर स्प्रे कर सकती हैं। और अगर बारिश के कीड़ों और मच्छरों को भगाना है तो दो टिकिया कपूर में दो लौंग जला दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। और अगर कनखजूरा अचानक सामने आ जाए तो वो आप ये करिए कि कोनों में, अपने घर के कोनों में बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए। तो बहनों, आज का हमारा ये वनिता लोक कार्यक्रम अब संपन्नता की ओर है। तो कार्यक्रम संपन्न

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम था बरसात। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है आपकी यादें। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

0: समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है।

0: नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि

0: राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
1: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
2: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
3: प्रस्तुत है NCERTMCIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे

0: सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओ, कक्षा 6 की समाज के अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
5: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
5: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
5: नाना नानी के शादी के कपड़े, भाई वाह। नानी, पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
5: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
5: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
5: नाना जी, पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
4: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
7: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
5: अच्छा,
7: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
5: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
5: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था

0: मामा जी,
1: भला
0: ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरे से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
1: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी

मिट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, धर्म हमें प्रेम और मानवता का मार्ग सिखाता है, न कि वैमनस्य का। सांप्रदायिक घटनाएं समाज में अशांति, हिंसा और आपसी वैमनस्य को जन्म देती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मिलजुल कर रहती हैं, इसलिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति अनेकता में एकता है। सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी नागरिकों को धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से भी बचना चाहिए। प्रशासन को भी समय पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए तथा शांति, इसी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। विद्यालयों और परिवारों में बच्चों को प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संस्कार दिए जाने चाहिए। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देंगे और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावना को बढ़ने नहीं देंगे। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा बुनकरों और कारीगरों के योगदान का सम्मान करना, साथ ही साथ भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, लोगों को स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। 7 अगस्त की तिथि 1905 को

स्वदेशी आंदोलन की याद में चुनी गई, जब विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने का आह्वान किया गया था। भारत का हथकरघा उद्योग हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बनारसी, कांजीपुरम, जामदानी, पटोला और चंदोरी जैसी प्रसिद्ध वस्त्र दिन भर में और विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट बुनाई साथ ही साथ कला के लिए जाने जाते हैं। यह उद्योग लाखों लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों और महिलाओं को रोजगार भी प्रदान करते हैं। आइए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय बुनकरों का सम्मान करें और भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं गीतों भरी कहानी। शीर्षक है एक खूबसूरत इत्तेफाक, प्रस्तुति शारका शेख की।

एक खूबसूरत इत्तेफाक। दोस्तों, आज की कहानी है कानपुर के पंकज की। पंकज के पापा एक सरकारी कर्मचारी थे, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर होता रहता था, लेकिन फिलहाल वो कानपुर में ही थे। पंकज बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा था, जिसका फॉर्म जमा करने वो कानपुर कॉलेज पहुंचा। वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको देखकर पंकज थोड़ा घबरा गया, मगर करता भी क्या, फॉर्म तो जमा करना ही था। वो लाइन में लग गया और एक एक कदम के साथ खिड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर उधर देखते देखते उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर रुक गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो समय थम गया हो, उसकी सोच ने काम करना बंद कर दिया। उसे देखकर पंकज को ऐसा लगा कि उसने ऐसी लड़की या तो कहानियों में सुनी थी या फिर ख्वाबों में देखी थी।

इस वक्त पंकज इस दुविधा में था, ना तो वो लाइन छोड़ सकता था और ना ही लड़की से बात कर सकता था। जैसे ही पंकज का नंबर खिड़की पर आया, उसने फॉर्म जमा किया और तुरंत उसके पीछे भागा, मगर तब तक वो लड़की जा चुकी थी। पंकज उदास मन से अपने घर लौट आया, लेकिन उसका चेहरा वो भूल नहीं पा रहा था। खाने की थाली में, दीवार के कोने में, टिक टिक करती घड़ी में, सिर्फ उसी का चेहरा था जिसे वो भुला नहीं पा रहा था। पंकज सोच रहा था, क्या इसी को पहली नजर का प्यार कहते हैं।

कुछ दिन इसी इंतजार में गुजरने लगे कि बस उस लड़की से एक मुलाकात हो जाए। समय रुका नहीं और अब उसके पापा का ट्रांसफर आगरा हो गया था। उस लड़की की यादों को साथ लेकर, जिसका उसको नाम भी नहीं पता था, वो अपने परिवार के साथ आगरा आ गया। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसने अपना ट्रांसफर आगरा कॉलेज में करवा लिया। उस लड़की की यादों को भुलाने के लिए उसने खुद को किताबों से घेर लिया। कहीं हद तक वो उसके चेहरे को भुलाकर अपनी मस्ती में आ चुका था।

मौज मस्ती केवल कॉलेज तक थी, बाकी बचा हुआ समय घर पर उससे कट नहीं पाता था। टाइम पास करने के लिए वो पास की ही किताबों की दुकान पर जाकर बैठने लगा। उन अंकल से भी उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। कुछ समय बाद एक दिन जब पंकज अंकल की दुकान पर पहुंचा तो वहां अंकल नहीं थे, मगर उस दुकान पर चढ़ते ही पंकज की दुनिया फिर थम गई, क्योंकि उस दुकान पर वो कानपुर के कॉलेज वाली

वही लड़की खड़ी थी। इस बार पंकज ने देर ना करते हुए तुरंत उस लड़की के पास जाकर पूछा, आप शायद कानपुर से हैं? लड़की हैरान परेशान सी हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोली, हाँ मैं कानपुर से ही हूँ। आपने मुझे कहाँ देखा? पंकज ने कहा, मैंने आपको कानपुर कॉलेज में देखा था। पंकज ने देर ना करते हुए अपना दूसरा सवाल भी पूछ लिया, आप यहाँ कैसे और क्या कर रही हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे पापा की दुकान है और कानपुर कॉलेज तो मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। इतनी देर में अंकल ने अपनी बेटी से परिचय कराते हुए पंकज की तारीफ की और अपनी बेटी का नाम कोमल बताया। उसके नाम को सुनकर पंकज खुशी के साथ अपने घर वापस आ गया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। पंकज और कोमल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और दोनों जिस दिन मिलते नहीं थे तो उनका वक्त नहीं गुजरता था, और अगर बात नहीं होती थी तो रात नहीं गुजरती थी, यानी पूरी तरह से उनका एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता था।

अचानक पंकज की तबीयत काफी खराब हो गई थी। वो कोमल से 4-5 दिन नहीं मिल पाया, मगर जैसे ही उसने अपने आप को संभाला वो तुरंत कोमल के पापा की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। उसने बराबर वाले दुकानदारों से पूछा, यहां ताला क्यों लगा है? तो उन्होंने बताया, आज उनके यहां लड़की की शादी है। पंकज ये सुनते ही खुद को संभाल नहीं पा रहा था और आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल दिया और सोच रहा था कि शायद कोमल ने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा वो लेटर नहीं पढ़ा। ये सोचते सोचते वो वापस आ गया और फिर उसने दुकानदार से पूछा कि शादी कहाँ पर है। उन्होंने बताया, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक मैरिज होम है, वहां। पंकज तुरंत वहां पहुंच गया। सामने ही कोमल के पापा खड़े थे।

पंकज आंखों में आंसू लिए उनके पास पहुंचा और बोला, अंकल एक बार भी नहीं बताया कि आज आपकी बेटी की शादी है। हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट जैसे कोई दर्द छुपा रही थी। जैसे ही अंकल कुछ बोल पाते तब तक पंकज के कंधे पर एक हाथ आया। वो हाथ किसी और का नहीं, कोमल का था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोमल की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जिनको रोज मिलने की आदत हो चुकी थी वो आज पूरे 5 दिन बाद मिल रहे थे। अंकल ने कहा, बेटा पंकज, ये शादी मेरी बेटी की नहीं, मेरी भांजी की है, क्योंकि कोमल मेरी इकलौती बेटी है। तभी कोमल ने कहा, पापा मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ पंकज से। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, पंकज जैसे लड़के के लिए मैं तो क्या, तुम्हारी माँ भी कभी मना नहीं करेगी। उस मंडप में पंकज और कोमल की शादी तो नहीं हुई, लेकिन दोनों एक जरूर हो चुके थे।

0: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे ड्रीम्स टेक ऑफ

0: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम. टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट.
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, आवाजें नेहा कक्कड़ और शेखर रबजियानी की. फिल्म का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. इस गीत को लिखा कुमार ने, संगीत विशाल शेखर का.

दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाजों में। फिल्म का नाम स्त्री टू। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत सचिन जिगर का। और इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प रखने वाले युवाओं को मंजिल अवश्य ही मिलती है। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

और इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन दृढ़ संकल्प रखने वाले युवाओं को मंजिल अवश्य ही मिलती है। इसी सुविचार के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी तक युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: संध्या के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि

0: हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:50। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे परिजीवियों से पशु सुरक्षा और सामयिक कृषि कार्य। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता धान की फसल में कीट प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशांत कुमार।

ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रज नवकथा मोहिनी। कथाकार होंगे नरेंद्र आत्रेय।

संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:31 पर। विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 8:20 पर।

एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गजलें, प्रस्तुत करेंगे सुरेश गुप्ता और कुछ गीत प्रस्तुति सुनील पाराशर की होगी।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:30। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का ख्याल गायन।

रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी समाचार, 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी इस द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज साहित्यिक, इस कार्यक्रम में आइए आज आपको सुनवाते हैं ब्रज नवकथा मोहिनी। कथाकार हैं नरेंद्र आत्रेय।
5: राजा के कर्मचारी राजकोष के समुद्र में रहने वाली मछलियों की तरह से होएं, अथाह जल में रह के मछली पानी कब पीवे, कितो पीवे, जाकू कौन जान सके। पर पानी पीवे की छूट पट्टी तो बाकू है ही है, चार्ज तो घटको। ऐसी छूट त्रिलोचन बाबू को भी मिली वही, तो रुपयन की प्यास तो उनकी कभी बुझाई नहीं। उनकी दशा वैसी ही जैसी कबीर दास जी ने दर्शाई, पानी बिच मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हांसी। चौबीसों घंटा याई धुन में लगे रहते, जाए खाऊं, बाए खाऊं, अब काय खाऊं। सरकारी माल तो हजम करते ये बकसते प्रजा को भी नाई। त्रिलोचन के पास काऊ की फाइल पहुंच जाए तो बिना रुपयान की बलि लिए तो वो खुलती ही नहीं। कुछ तो भेड़ पहले से ही मुड़वे को तैयार रह के आती। खीसे निपोड़ते लोग आते, खुशामदी नमस्कार करते। जो गुण त्रिलोचन की कऊ पीढ़ी में कभी सुने भी नाए गए, ऐसे उन दिव्य गुणन को त्रिलोचन में आह्वान करते हुए वा को स्तुति गान करते। पर इन सब बातन से त्रिलोचन पसीज तो ना हो। वा के तीसरे नेत्र से निकली भई खोजी किरण वा अभ्यर्थी की जेब, बाकी पूरी औकात और ये ज्यादा से ज्यादा कहा दे सके, ऐसी बाकी मनस्थिति को आर पार भेद के पूरी खोज खबर लाती रहती। वो गरजमंद अपनी पूरी बात त्रिलोचन के सामने रखतो कि देखो जी तो काम है, और जी देखो बाबूजी ऐसे ऐसे होना है और जब तक होना है, अब तुम अपने दाम बोलो। त्रिलोचन बाबू हैं तो काले कलूटे, माइनस को बिन को चश्मा, आंख दिखे भीतर कुआ में मन का किसी चमकती भई, पर बिन के नखरे और अदाएं बड़ी दिलकश और मारक के। मेज पे पेन पटकते भई कहते, तुम लोग तो खाट में सोट के ऐसे भगे चले आओ जैसे सबरो दफ्तर तुम्हारी बेगारे सिलटाए हुए कोई बैठो हुए हो। बड़े साहब भार गए, कागज तुम्हारे उल्टे सीधे।

पैसा सरकार से आयो ना है और कब को मारो कब आवे कछु पतो है। अभी तो यहां में 3-4 महीना आराम से लग जाएंगे, तुम बीच बीच में पूछ जाइयो, पर जो गरजमंद आयो है वो का महीना को चक्कर लगाए को थोड़ी आयो है, वो अपनो काम करवाए को आयो है। वो फिर चिरौरी करतो, बाबू जी हमें सब खबर है, आपकी एक दफे बस कलम घूम जानी चाहिए, फिर बामे कोई एक नुक्ता ना बैठा सके, और सब जगह तो बस फिर चिड़िया ही बैठती चली जाए, और फिर हमारे कागजों सब एकदम सही है। त्रिलोचन बोलो के सही काम है तो मैं करूंगो ही, गलत करके का अपनी नारे फंसाऊंगो। आपसे कह तो दई आप बाद में मिलियो। गरजमंद बोलो बाबूजी हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमारी तो छोटे मोटे काम है, कछु काम में काम ना है, कर कर आए दो, नहीं तो हमारी तो सबरी उमरी आईवे जाईवे में बीत जाएगी। हम 6 जने आप हुक्म करो, आपकी बात जमीन पे ना गिरन देंगे। त्रिलोचन बोलो 5-5 हजार रूपये लगेंगे। गरजू खिसर पिसर कर गये, भाई बाबूजी रुपया तो हम देंगे पर रुपया तुमने बहुत ज्यादा बताये। त्रिलोचन बोलो भैया मैं कोई एकलो ही थोड़ी खा जाऊंगो, जा मैं क्यों जनिए, मैं तो वैसे ही बदनाम है रहे हूं। अच्छी बात है तो रुपया आपको पूरे मिल जाएंगे, आप हमें तारीख बताओ कब आ जाए, काम हमें पूरा भयो मिलना चाहिए। त्रिलोचन कछु नरम पड़तो, अच्छा काम तुम्हारे है जाएगा, रुपया रख जाओ और काउए बताए की जरूरत ना है, क्योंकि जे काम अभी है रहे ना है काऊ के, और जा तरह से औरन के जो काम 100-500 में ही है रही वही काम के 5-6 हजार रूपये लेके इन भेड़न को मूछ पूछ समेत मुड़ के त्रिलोचन बड़ो राजी रह। फिर उनसे आंख के सारे में कान पे मोह लगाए के धीरे धीरे बतराए के सबरे पैसा ने झड़ाई ले। तो काम तो 10-5 दिन देर सवेर सबके होने ही है, ऐसे ऊपर से सख्त आदेश आ चुके, पर भीड़ तो भीड़। अब या पब्लिक के काम में आदमी तो हरतनिया को ही आवे, कछु बड़ी अकड़ तकड़ वाले भी आते, कछु राजा हरिचंद के चेला आते कि हमने तो आज तक पूरी जिंदगी में कानी कौड़ी की बेईमानी नहीं करी, रिश्वत को पैसा हाथ से छियो नहीं, और जब हमने लियो ही नहीं तो देवे को कहां से लामे। जिनने भी इतिहास पुराण पढ़े हैं बिने सबको पतो है कि जिन बातन के पीछे राजा हरिश्चंद को कैसे कैसे दुख उठाने पड़े है। वो तो खैर त्रेता युग की बात थी, जा वक्त तो घोर कलयुग बरस रहे हो, अब तो पतो नहीं काका न भोगनो पड़े। त्रिलोचन अपनी तिकड़म और कारगुजारी से बिन हरिचंद के चेलान की ऐसी गत बनातो कि शेष शारदा विवाह को वर्णन नहीं कर सके, उनके लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते, वो बरसन त्रिशंकु से अधर में लटकते रहते, कछु लिखा पड़ी यूनियन बाजी के बल पे कर्मठ कर्मयोगी उन्हें धरातल पे खींच के लाते भी है तो त्रिलोचन अपने बाबू बल से फिर से उन्हें अधर्मी लटका दे। तो त्रिलोचन में जे ऐसी बाबू शक्ति सहजी ना आई गई, वो भी भंडारे जागरण 56 भोगन में निरो पैसा दान करतो। जा वखत वो संजाकू दारू पीकर टुन रह के बैठतो, बावखत कोई भी चले जाओ काऊ बात को भी चंदा ले आओ, काऊ बात की नाई नाए। परमात्मा यदि कृपा करे तो संपन्नता में संत वृत्ति को भी विकास होए। त्रिलोचन याई बात को मानवे लग गयो के औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। त्रिलोचन अपने अधिकारी और अच्छे रसूख वाले धनी मानी व्यक्ति इनकी भेंट पूजा चढ़ाए में कोई कसर न छोड़तो। वो भी त्रिलोचन की एक आवाज पे आधी रात को बाकी हर मदद करवे को तैयार रहते। अब ऐसे पुण्यात्मा के घर तो लक्ष्मी बरसे ही बरसे, खूब भव्य भवन काऊ बात को अभाव नहीं, पर बखत की टेढ़ी मेढ़ी चाल से कौन बच सके। एक दिना त्रिलोचन बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए, नौकरी से घर बैठार दिए गए, मुकदमा चलो सो अलग। इनकी धर्म पत्नी चंपा देवी ने जो अपने बनाव श्रृंगार और फैशन परस्ती के कारण दूर दूर तक ख्याति प्राप्त

0: कर चुकी। उनने पानी पी पी के अपने पड़ोसी और जरबे फुकवे वाले लाख लाख गारी दे दे के खूब कोसे। पति की बहाली के ताई निर्जल व्रत रखे, यज्ञ हवन करवाए, दान दिए। उधर त्रिलोचन ने भी दुनिया भर की दौड़ धूप करी, जगह जगह नाक रिगड़ी, भेंट पूजा चढ़ाई, तो या तरह से कछु करनी कछु कर्मगत त्रिलोचन बहा ले गए। आजकल सालगन के दिनान में चाक भात के ताई जाती भई बैयरवानी गीत गाती भई चले, चिड़ीरी तो चामरिया भावे, घर में सुंदर नार बलम तो परनारी भावे। बाई की तर्ज पे त्रिलोचन अपनी भरी पूरी तनख्वाह पे उतने आसक्त नाई जितने रिश्वत पे रीझे भई है। बहुत दिना कुर्सी से अलग रहवे के मारे रिश्वत रानी से बिछो के बाद जब उनको पुनर्मिलन भयो तो वाके रूप रस में आकंठ निमग्न है गए। रिश्वत नायका को रिझाएवे के ताई अब उनने पूरा मोह भर के पान मसालो और तंबाकू खाएवो और शुरू कर दियो। या से आएवे जाएवे बारे इन पे रोब भी ज्यादा पड़तो और हेकड़ी साहबी दिखाएवे में भी एक नयो ही अंदाज पैदा है गयो। रिश्वत से अपनी जेब भरते भरते त्रिलोचन को ये पतो ही नहीं चलो कि पान मसाले और तंबाकू ने बाके गाल में कब छेद कर दीनो। वो तो पतो ही जब चलो जब छेद गाल में आर पार है गयो। डॉक्टर की शरण में गई, दवा खाएवे से लगाएवे से कछु फर्क पड़ो नहीं, तो और बड़े बड़े अस्पताल में टेस्ट भयो तो पतो चलो कि कैंसर है गयो है। और देर बहुत है चुकी है, या की तो सबरे शरीर में जड़ फैल चुकी है। चंपा तो बहुत रोई जी की, सब आए गए इनको बताती, मैं तो बहुत दिनान से हल्ला कर रही, कहू अच्छे डॉक्टर दिखाओ, पर बिना तो हर दिना हर वक्त ऑफिस जाएवे की मची रहती। अरे पहले तो शरीर है बाद में कछु और है, पर इनने तो मेरी बात कान पे धरी ही नहीं। जो जो इलाज करो रोग बढ़ते ही चलो गयो के हिसाब से गाल को घाव बड़ो होते ही चलो गयो। भीतर को जबड़ो भार से दिखाई देवे लग गयो, चेहरा डरावनो विभत्स है गयो, भयानक बदबू मारती, बुलावे से भी कोई पास नहीं फटकतो। डॉक्टर ने जवाब दे दिनो, वो बोले चाहे जब इनको बोल बंद है सके, हाथ पांव बेकार है सके, याददाश्त चली जाए, कुछ भी है सके। चंपा को बड़ी घबराहट भई, अभी तो बड़ी कच्ची गृहस्थी है, एक भी छोरी छोरा हिल्ले से लगो ना है, कैसे पाल लगेगी। त्रिलोचन से बोली कि पैसा कितो है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे सब बताए जाओ, कैसो जी जान से दिन रात एक करके कमायो भयो पैसा है, कहीं यो ही अखारत न चलो जाए। ऐसी पूछे बारी त्रिलोचन को अपनी पत्नी और ऐसे राज को जानवे बारे बच्चा ऐसे बाकू दिखाई दे रहे जैसे जम के दूध बाके शरीर में से जबरदस्ती प्राणन ने खींच रहे हों। और ऐसी बेहाई ढिटाई और जने जने को सताए के कमाई भई संपत्ति और रुपया असंख्य कार्य नाग बन गई जो बाके रोम रोम को दसो दिनान से डस रहे, वा पीड़ा को कौन वर्णन कर सके।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज नव कथा मोहिनी। कथाकार थे नरेंद्र आत्रेय।

श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज संध्या 7:31 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम नवरंग, जो कि आधारित होगा श्रोताओं के संदेशों पर। यदि आप भी अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो कीजिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना हरिओम शरण की आवाज में आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में आपने सुनी ये भक्ति रचना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया देखो, आजकल चौमासे को समय तो चल ही रहे हो और या समय पे हमारे जो पालतू पशु हैं, चाहे वे हमारे दुधारू पशु हों, चाहे हमारे पालतू पशु जैसे कि हमने कुत्ता पाल रखे हैं या हमने बिल्ली पाल रखी हैं या फिर हमारी गाय भैंस भेड़ बकरियाँ तो जी हैं ही, तो इनमें आजकल का हो कि भैया गंदगी की वजह से थोड़ा सो जैसे कीच में हमारे पशु रहें या फिर जो समझ लियो कि बरसात है रही है और जो जा जगह पर हमारे पशु बैठे हैं वह जगह पर कीचड़ है जाए, तो वाते का है कि हमारे पशु के शरीर पे ऊपर कलीली लग जाएं और फिर संग ही उनमें जू भी पड़ जाएं, जो जैसे के बड़े बाल नवारे जैसे हमारी बकरी है हमारा भेड़ हैं, तो इनमें जू भी पड़ जाएं और फिर कलीली तो भैया हमारे सफ़ेद धन में ज़्यादातर लगें जैसे के गाय है बैल हैं बछड़ाएँ बछियाएँ, तो इनके निस्तारण के कार्य भैया हमें समय समय पे हमारे वैज्ञानिक हमारे विशेषज्ञ बताते रहें। तो ज़्यादातर तो पहले हमारे बड़े बूढ़े ऐसे करो करे कि उनने जो है धीरे धीरे हाथनते निकाल के और भैया ऐसी जगह गाड़ दे या गोबर में या काऊ में जाते कि वे आगे नहीं जा सकें और वहीं के वहीं वो उनको निस्तारण है जाए वहीं समाप्त है जाए। फिर जो बताएं कि भैया जा जगह पर हमारे पशुशाला है जैसे टटिया हमारी बनी भैया छप्पर हैं हमारे और बहुत सी भैया कहा करें ईंटनों खरंजा लगा दें तो वहाँ में उनके अंडा जो है छुपे परी रह जाएं। तो ऐसे बताई कि भैया अगर चूना अगर हम छिड़क दें या चूना को पाउडर अगर डाल दें तो वाती उनके जो अंडा जो है वह समाप्त है जाएं। तो फिर ही भैया ऐसी ऐसी दवाई आ रही है बाजार में कि मान लो हमारे लवारे के है गए ऊपर ते कलीली लग गई छोटे छोटे ऐसे गुच्छा से बन जाएँ उनके, तो वहाँ में कहा है कि दवाई ले के पानी में घोर के फिर वह नहाए दें अपने पशुए और मोहते बांध दें मुछी का, क्योंकि अगर वो चाट गो तो वाकई नुकसान है सके, तो मुछी का बांध के थोड़ी देर बाद तुरंत वह पशुए अपने नहाए दो, साबन लगा दो बेशक तो नहा के स्वच्छ कर दो फिर दूसरी जगह बांध दो, पर जरूर ऐसा करना है कि जा जगह पे बंध रहे हैं वहाँ में जो है छिड़काव जरूर कर देना चूना को या फिर अन्य कीटनाशक आ रहे हैं तरह तरह के उनको छिड़काव करी थे जिन जिन जगह पे भी उनके अंडा उनके छोटे छोटे बच्चा छिपरे होंगे परजीवी के तो वे समाप्त है जाएंगे, तो ऐसे करके भैया अपने पशुओं को परजीवी से हम सुरक्षित कर सकें। तो जे तो बात करी हमने परजीवी से पशु सुरक्षा की, आगे बढ़े भैया तो एक

मधुवन की रू की गैल जसोदा तेरे लाला ने। पिंकी शर्मा और सखीन के सुर में भैया अभी आप या बिज लोकगीत को आनंद ले रहे थे। देखो

यह धान की फसल हमारी खेत में खड़ी है और या समय पे हमने जो है वहाँ में जो है खाद पानी दे दियो है। बरसात अब है ही जाए भैया, बीच बीच में दूसरे तीसरे चौथे दिन बरसात है रही है वो तो, और पानी की खूब पूर्ति है। पर या समय जो करवे वाले काम है वो है धान में कीट प्रबंधन, कि भाई आजकल ऐसा हो के पत्ता लपेट आ जाए के तो जड़ गलन आ जाए।

0: जानकारी दिवा रहे हैं आज आपको, धान की फसल में कीट प्रबंधन, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुशांत कुमार। सुनो भैया या वार्ता के माध्यम से।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान समय खरीफ फसलों का चल रहा है और हमारे ब्रज क्षेत्र में खरीफ फसलों में धान का एक प्रमुख स्थान है। अगर बात करें ब्रज क्षेत्र की तो ब्रज में धान का क्षेत्रफल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में कम है, फिर भी सिंचित क्षेत्रों में धान एक महत्वपूर्ण फसल ली जाती है। यहाँ मुख्यतः बासमती एवं कुछ गैर बासमती किस्मों की खेती की जाती है, किंतु अनियमित वर्षा, अधिक तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण कीटों का प्रकोप वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। अगर बात करें वर्तमान परिदृश्य की तो वर्तमान मौसम तना छेदक, पत्ती मोड़क तथा फुदकों के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। ब्रज एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बासमती क्षेत्रों में तना छेदक एवं पत्ती मोड़क सबसे महत्वपूर्ण कीट बने हुए हैं, जबकि अत्यधिक नाइट्रोजन वाले खेतों में हमें भूरा फुदका तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। किसान भाइयों, धान की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फसल का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह जो कीट हैं यह हमारी फसल को नुकसान पहुंचाकर इसके उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। आज हम धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों, उनके द्वारा होने वाली क्षति की पहचान तथा प्रभावी एवं समेकित कीट प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि समय पर उचित उपाय अपनाकर इन कीटों से फसल की सुरक्षा कैसे की जाए। देश के करोड़ों लोगों की भोजन की आवश्यकता इसी फसल से पूरी होती है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए केवल उन्नत किस्म ही जरूरी नहीं है, साथ ही समय पर रुपाई और संतुलित उर्वरक प्रबंधन भी जरूरी है। साथ ही साथ फसल को कीटों से सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि समय रहते कीटों की पहचान कर उचित प्रबंधन नहीं किया जाए तो उत्पादन में लगभग 30-70% तक की कमी आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों, किसी भी कीट के दिखाई देने पर सबसे पहले खेत का नियमित निरीक्षण जरूर करें, तत्पश्चात ही उस कीट की सही पहचान और प्रबंधन हम कर सकते हैं। इसके लिए हम IPM अर्थात एकीकृत कीट प्रबंधन की विधियों को भी अपना सकते हैं। धान में अगर बात करते हैं हम तो इसमें जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं वह हैं आपके पीला तना छेदक, भूरा तेला, हरा फुदका, पत्ती लपेटक, राइस हिस्पा तथा गंधीबग। इन सभी कीटों का प्रभावी प्रबंधन तभी संभव है जब किसान नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण कर रहे हों। सप्ताह में किसान भाई 1-2 बार खेतों का भ्रमण जरूर करें तथा पौधों के साथ उनकी पत्तियां, तने एवं बाली की स्थितियों को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि बिना पहचान के कीटनाशक का प्रयोग करने से सिर्फ हमारी लागत बढ़ती है और साथ ही लाभकारी कीटों को भी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, धान में लगने वाले सबसे प्रमुख कीट की बात करें तो वह है आपका धान में लगने वाला पीला तना छेदक। यह कीड़ा अंडों से निकलने वाली सुड़ियों के रूप में पत्ती के सारे तने के अंदर प्रवेश कर तने के मुलायम भाग को खाती है। इसके प्रकोप से प्रारंभिक अवस्था में बीच वाली पत्ती सूख जाती है और किनारे की पत्तियां नीचे गिरकर दिल के जैसी आकृति बना लेती हैं, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। बालियां निकलने के समय प्रभावित बालियां सफ़ेद रह जाती हैं और उनमें दाना नहीं बनता है, जो हमें अलग से दिखाई देती हैं। इस अवस्था को हम वाइट ईयर कहते हैं। किसान भाइयों, इसकी पहचान हम मादा पतंगी को देख के लगा सकते हैं। इसके जो सभी पतंगे होते हैं, चाहे वह नर हो अथवा मादा, हल्के पीले रंग के होते हैं, जबकि मादा के अगले पंखों पर काला धब्बा हमें देखने को मिलता है। पीला तना छेदक प्रबंधन के लिए हमें समय पर रुपाई करना अत्यंत आवश्यक है, साथ ही साथ पौधों में उचित दूरी जरूर बनाए रखें तथा खेत में खरपतवार नियंत्रण जरूर करें और रुपाई से पहले पौधे की पत्तियों के किनारे काट कर फेंक दें अथवा उन्हें अच्छी तरह से नष्ट कर दें। फसल कटाई के बाद खेत में बचे हुए ठूठों को नष्ट करें और गर्मियों में जो है आप गहरी जुताई करें, जिससे तनों में छिपी हुई सुड़ियां नष्ट हो सके। किसान भाइयों, संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करें, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन से कीटों की संख्या जो है वह काफ़ी तेजी से बढ़ती है। निगरानी के लिए हम प्रति हेक्टेयर 8-10 फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं और इसके साथ ही जो अंड परजीवी हैं उनका जो संरक्षण है वह अपने खेत में अवश्य करें। यदि खेत में इस कीट का जो प्रकोप है वह अधिक दिखाई देता है तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो कीटनाशी है उसकी 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ या

फिर फिप्रोनिल की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आप सभी जरूर याद रखें कि दवा को खेत में हल्की नमी की स्थिति में रेत या फिर सूखी मिट्टी में मिलाकर पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव करें। दवा डालने के बाद खेत में उचित नमी बनाए रखें ताकि दवा जो है वह अच्छी तरह से काम कर सके। किसान भाइयों, इसके बाद जो प्रमुख कीट है धान का वह है भूरा तेला। यह एक रस चूसक कीट है जो पौधे के निचले भाग में छिपके रहता है। इसके निम्फ एवं वयस्क दोनों ही पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर होकर पीले पड़ जाते हैं और समय के साथ धीरे धीरे जो पौधा है वह सूख जाता है। भूरा तेला अधिक नाइट्रोजन उपयोग, लगातार खेत में पानी भरे रहने तथा अत्यधिक घनी रुपाई के फसलों में तेजी से बढ़ता है। इसके नियंत्रण के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन बहुत ही जरूरी है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अगर खेत में अतिरिक्त पानी है तो उसे जरूर निकाल दें। खेत के नियमित निरीक्षण के समय पौधे के निचले भाग को हिलाकर कीटों की संख्या अवश्य देखें। यदि कल्ले बनने की अवस्था में लगभग 10 से 12 कीट प्रति पौधा या फिर बालियां निकलने की अवस्था में 15 से 20 कीट प्रति पौधा पाए जाएं, तभी नियंत्रण उपाय अपनाएं। धान के खेत में पाए जाने वाले अन्य कीट जैसे कि मकड़ी, लेडी बर्ड बीटल, बग्स, ड्रैगन फ्लाई और डैम्सन फ्लाई जैसे प्राकृतिक शत्रु भूरा तेला की जो संख्या है उसको नियंत्रित करने में मदद करते हैं, इसलिए अनावश्यक कीटों के प्रयोग से बचें। यदि खेत में प्रकोप अधिक दिखाई दे तो नियंत्रण के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग जरूर करें। इसके लिए विफ्रेजिन की 300 मिलीमीटर मात्रा को लगभग 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें, अथवा पाइमेट्रोजिन की लगभग 150 ग्राम मात्रा को लेकर हम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर अच्छी तरह से छिड़काव करें। आप सभी यह जरूर ध्यान रखें कि एक ही कीटनाशक को बार बार प्रयोग ना करें, बल्कि अलग अलग समूहों की दवाओं को बदल बदल कर प्रयोग करें, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो कीट हैं उनमें दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी। दवाओं का छिड़काव करते समय हम यह जरूर ध्यान रखें कि दवा का जो छिड़काव करना है वह सुबह अथवा शाम के समय करें, जो अधिक प्रभावी समय है। अब बात करते हैं पत्ती लपेटक की। यह कीट वर्षा ऋतु में अधिक नमी एवं मध्यम तापमान की स्थिति में तेजी से बढ़ता है। इसकी सुंडियां धान की पत्तियों को मोड़कर रेशमी धागों से जोड़ देती हैं और उसी के अंदर रहकर पत्तियों के हरे भाग को खाती हैं। इसके कारण पत्तियों पर सफेद लंबी धारियां बन जाती हैं, जो पौधे के द्वारा खुद का भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। अधिक प्रकोप होने पर पौधा कमजोर हो जाता है और साथ ही जो बालियां होती हैं उनके दानों में भराव जो है हमें कम देखने को मिलता है। पत्ती लपेटक का प्रभावी नियंत्रण प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ किया जा सकता है। किसान भाई नियमित निरीक्षण के समय इस कीट की प्रभावित फसल जो है उसकी पत्तियों को हाथ से तोड़कर नष्ट कर दें। साथ ही खेत के आसपास उगे हुए खरपतवार अथवा जो घास है उसको हटा दें, क्योंकि यह कीट के वैकल्पिक पोषक तत्व के रूप में कीट को फायदा पहुंचाते हैं। कल्ले निकलने की अवस्था में खेत के ऊपर रस्सी चलाने से जो सुनियाँ हैं वह नीचे गिर जाती हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। यह कम लागत वाला और पर्यावरण के अनुकूल उपाय है। इस कीट के नियंत्रण में प्राकृतिक शत्रुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे परजीवी तया एवं मकड़ियाँ इसकी सुंडियों को नष्ट करती हैं, इसलिए अनावश्यक कीटनाशकों के प्रयोग से बचें। यदि प्रति पौधा लगभग एक सुंडी या फिर दो क्षतिग्रस्त पत्तियां हमें दिखाई देती हैं तभी कीटनाशकों द्वारा नियंत्रण उपाय अपनाएं। यदि खेत में कीटनाशकों का प्रकोप अधिक है और सामान्य उपायों से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो अनुशंसित कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। इस कीट के लिए हम क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल की छोटी बोतल जो लगभग 60 मिलीलीटर की होती है उसे 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें, या फिर इसकी जगह हम फ्लूबेंडियामाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लगभग 40 मिलीमीटर मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त एमामेक्टिन की लगभग 100 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव कर इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है। रासायनिक दवाओं के साथ साथ पर्यावरण के लिए सुरक्षित नीम आधारित एजाडिरेक्टिन की 1 लीटर मात्रा को 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस कीट में प्रबंधन
होता है।

0: अब बात करते हैं हरा फुदका की। यह एक छोटा सा हरे रंग का रस चूसने वाला कीट होता है जो पत्तियों से रस चूसकर पौधे को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त यह धान में टंगरो वायरस नामक बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने में भी सहायता करता है। अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियां जो हैं वह पीली पड़ जाती हैं और पौधे की जो वृद्धि है वह रुक जाती है। इस कीट का प्रबंधन हम भूरे तेले के लिए बताए गए उपायों द्वारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें धान में एक और प्रमुख कीट देखने को मिलता है जो कि है गंधी बग। यह कीट विशेष रूप से बालियां निकलने एवं दानों की दूधिया अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। इसके शरीर से विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है, इसलिए इसे गंधी बग कहते हैं। इसके निम्फ एवं वयस्क दोनों ही दूधिया दानों का रस चूसते हैं जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं और उनमें भराव कम हो जाता है। यह चावल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस कीट की सक्रियता हमें शाम को अधिक देखने के मिलती है, इसलिए इसी समय खेत का निरीक्षण जरूर करें। यदि प्रति पौधा एक या दो गंधीबग हमें दिखाई देते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड या फिर थियामिथोक्सोम की लगभग 500 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में लेकर उसका घोल बनाकर खेत में छिड़काव शाम के समय ही करें। अब बात करते हैं राइस इस्पा की। राइस इस्पा एक छोटा सा नीले काले रंग का चमकीला भ्रंग होता है। इसका वयस्क पत्तियों को खुरच कर खाता है जबकि इसकी सूंड़ियाँ पत्तियों के अंदर सुरंग बनाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इससे पत्तियों पर सफ़ेद धारियां बन जाती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी जरूरी है और साथ ही खरपतवार प्रबंधन भी। और इसका प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित उत्पादों का प्रयोग, इससे पत्तियों पर सफ़ेद धारियां बन जाती हैं और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत की नियमित निगरानी जरूरी है और साथ ही खरपतवार प्रबंधन भी। और प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित उत्पादों का प्रयोग कर हम इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। रोपाई से पहले पौधों की ऊपरी पत्तियों को हल्का काट देने से अंडों की जो संख्या है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। यदि प्रकोप अधिक हो जाए तो फिप्रोनिल की 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में केवल हानिकारक कीटों का नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं है बल्कि मित्र कीटों का संरक्षण भी आवश्यक है। खेत में पाई जाने वाली जो विभिन्न मकड़ियां हैं, लेडी बर्ड बीटल है, ड्रैगन फ्लाई, मिरीट बग या फिर अंड परजीवी हैं जो कि अन्य परजीवी कीट हैं, प्राकृतिक रूप से हानिकारक कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ बार बार और अनावश्यक रूप से अधिक विषैले कीटनाशकों का प्रयोग करने से यह लाभकारी जो जीव हैं वह भी नष्ट होते हैं और भविष्य में जो हानिकारक कीट हैं उनका प्रकोप बढ़ सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों, आज के समय में जैविक एवं पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाना बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित एजाडिरेक्टिन तथा फफूंद आधारित ब्यूवेरिया बेसियाना तथा मेटाराइजियम का प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर ही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, दवा का छिड़काव हमेशा सही मात्रा में करें। सुबह अथवा शाम के समय ही छिड़काव करें और तेज हवा या बारिश की संभावना हो तो छिड़काव ना करें। छिड़काव करते समय मास्क, दस्ताने और पूरे कपड़े अवश्य पहनें तथा खाली दवा की बोतलों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। धान की अच्छी पैदावार का रहस्य अधिक दवा या अधिक उर्वरक में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें एवं खरपतवार को नियंत्रित रखें। साथ ही मित्र कीटों का संरक्षण जरूर करें और फेरोमोन ट्रैप या फिर प्रकाश प्रपंच का उपयोग जरूर करें। यदि किसान इन वैज्ञानिक तरीकों को अपने अमल में लाते हैं तो कीटनाशकों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को कम किया जा सकता है। साथ ही फसल स्वस्थ रहेगी, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगी तथा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, पहले पहचान फिर निगरानी, उसके बाद जैविक उपाय और आवश्यकता पड़ने पर ही रासायनिक नियंत्रण, यही सफल लाभदायक और टिकाऊ धान उत्पादन का मूल मंत्र है। धन्यवाद।
1: भैया देखो, अभी आप जानकारी ले रहे थे कि धान की फसल में कीट प्रबंधन कैसे किया जाए। देखो डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि हम

0: शिकार के कीटन कोई प्रबंधन नहीं करें भैया, हमारे जो मित्र कीट हैं जो हमारी फसल को लाभ दें उनको प्रबंधन करना होगा। ऐसा नहीं हो कि वे हमारी फसल में ते नष्ट रह जाएं और हमारी जो फसलें लाभ दे रेखा हैं वो हमारा लाभ ते हम वंचित रह जाएं। तो जो जानकारी दी डॉक्टर सुशांत कुमार ने, अब भैया समय रहते एक लोकगीत तो आपको सुनवाएंगे, पर बातें पहले एक आपको सूचना दे दी जाए, सुनो।
1: ध्यान दें, अक्सर खेतों में काम करते समय या अंधेरे में सर्पदंश यानी सांप के काटने का खतरा बना रहता है। थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से हम अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय। सांप से बचाव के लिए क्या करें? खेतों में काम करते समय हमेशा सावधानी बरतें। हो सके तो नंगे पैर न रहें और जूते या बूट का प्रयोग जरूर करें। रात के समय या अंधेरे में बाहर निकलते वक्त अपने साथ टॉर्च और एक लाठी हमेशा रखें। लाठी की आहट से सांप दूर भाग जाते हैं। लकड़ी गोईठा यानी उपले या भूसे के ढेर में बिना देखे सीधा हाथ कभी न डालें। अपने जूते, बिस्तर, कपड़े या बैग का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह झाड़ लें और चेक कर लें। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और बड़ी झाड़ियों की चटाई करते रहें ताकि वहां सांप न छिप सके। अगर किसी को सांप काट ले तो तुरंत ये कदम उठाएं। सबसे पहले सांप काटे हुए व्यक्ति का हौसला बढ़ाएं, उसे बिल्कुल न घबराने दें। पीड़ित को सोने न दें, उससे लगातार बात करते रहें। ध्यान रहे जिस अंग पर सांप ने काटा है उसे बिल्कुल न हिलाएं डुलाएं, उसे एक जगह स्थिर रखें। अपनी मर्जी से पीड़ित व्यक्ति को खाने या पीने के लिए कोई भी दवा न दें। सबसे जरूरी बात, ओझा या झाड़ फूंक के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें। बिना देरी किए पीड़ित को तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल लेकर जाएं। याद रखें, सही समय पर सही इलाज ही जान बचा सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
2: अभी आपने ये सूचना सुनी। हम
0: तो भैया आपने ये सूचना सुनी कि भैया सांप से हम कैसे बचें और का सुरक्षा करें। तो देखो खेतन पे ही ना है, घर में घुस के सांप काट रहे हैं भैया, कल परसों की घटना भई है। तो हम अपने घर में सुरक्षित रखें भाई कि हमारा सांप अंदर न जाए और आ जाए तो हम कैसे बाहर निकालें। तो समय रहते भैया एक लोकगीत और आपको सुनवा दें। तो दामोदर शर्मा के सुर में सुनो जी लोकगीत।

राधे झूलन पधारो घिरे आए बदरा, दामोदर शर्मा के स्वर में गाय भई या ब्रज लोक गीत के संगई हमारो जो ब्रज गांव में कार्यक्रम भैया यही संपन्न है रो, देव हमें आज्ञा सबई कु राम राम।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: और आज में लगातार बारिशों से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी के असी घाट पर बदला गंगा आरती का स्थान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में साल 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: कार्यक्रम में वाराणसी के नसीम अंसारी को इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार लुप्त प्राय बुनाई श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों बुनकरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के समस्त शिल्पकारों और बुनकरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैंडलूम और पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारीबाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40,000 से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की।
2: हमारा प्रयास यही होना चाहिए, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
0: मुख्यमंत्री योगी

0: नाथ ने आज अंबेडकर नगर में 706 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंबेडकर नगर विकास के मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंबेडकर नगर को एक्सप्रेसवे से जोड़कर जिले को विकास में गति दी है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी अंबेडकर नगर को बनाया जा रहा है।
1: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थ नगर के बांसी से होते हुए, बसी होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने और चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको प्रयागराज तक पहुँचाएंगे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सतत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिदिन विद्यार्थियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रन फॉर नशा मुक्ति, मैराथन, नुक्कड़ नाटक जैसी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कांवड़ यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उधर मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िये शिवचौक स्थित मंदिर में बाबा भोलेनाथ के समक्ष माथा टेक कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिले के सभी मुख्य मार्ग बंद होने के कारण शिवरात्रि तक स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और एटीएस के जवान तैनात किए गए हैं। मेरठ में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी रख रहे हैं।
3: समय समय पर सभी ऑफिसर्स वही जगह ड्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना आवश्यक है। प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार का जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो कांवड़ मार्ग के साथ। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक यहाँ पर भी डुअल लेन हाईवेज है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि आने जाने के मार्गों का सेपरेशन रहे और किसी प्रकार की जो है ओवरटेकिंग इत्यादि की कोई दुर्घटना ना हो।
0: पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण 80 घाट पर होने वाली आरती के स्थान को 10 फीट ऊपर कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद गिरावट आने का अनुमान भी जताया गया है। और अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है ये क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित। हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को 194 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा ये जनपद। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी के 80 घाट पर बदला गंगा आरती का स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम शाम सुहानी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी में। तो आइए शुरू करते हैं गीतों का और फरमाइशों का सिलसिला। कार्यक्रम में पहला संदेश मिला है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। अगली फरमाइश के साथ आप सभी जुड़े हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री और पिहरा बाजार झुमरी तलैया से आप सभी श्रोता अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया जिया तुसी, अनिरुद्ध मुनिदेवी, जयप्रकाश और बसंत लाल। समता नगर कास्ती से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया सिंधे, मानसी और निशांत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार ढींगिया जुड़ चुके हैं। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, लकी और तान्या नारंग। डिंडोरी नाशिक से विशाल गवली, सोनाली समर्पण भक्ति गवली। नांदुरा से संतोष वसानी, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक। नलेश्वर नगर नरवेल मारा से पीएस नहापकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले और सोपान ताइडे। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के

साथ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा, राजेश सेन, सुरेखा शुभम, अक्षय सेन, शिवाजी नगर खंडवा के श्रोताएं आप सभी अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं। फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सलमा समीर मुमताज दिलशाद नसीर मुलानी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या गोस्वामी। कल्याण मुंबई से किशोर हेबराले, सुजाता और प्रतीक हेबराले। गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, श्वेता, रजनीश, आनंद और इनके समस्त परिवारजन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, साइना और निवान शर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

जहाँ श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला झालावाड़ राजस्थान से ही मनभावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा और पुनिधिबाई बागरी। साधु शहर राजस्थान से जुड़े राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, ऋषिकेश जीविका सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका विशाखा सोनवने, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनू, शुभदीप गुरडाल, अविराज, फिरोजपुर पंजाब के आप सभी श्रोता हैं, वसीम अक्रम, रूबीना आरिज, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, संदेश प्राप्त हुआ सीतामणि से, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। अगले संदेश के साथ शाजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के और हनुमान बोर्ड के संदेश हिंगोली महाराज से, अम्बेडकर चौक वाकोडी से उत्तम स्वराज जमदाडे। महोबा उत्तर प्रदेश से आप सभी श्रोता नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न, गौरव जानवी गुरु और नीरेंद्र राजपूत, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा और माही मलिक, अमरावती महाराज से हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय, रुद्रा रामेकर और इनके परिवार के सभी सदस्य, अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, उमर डावर, राजेंद्र कटारे, खंडवा के आप सभी श्रोता हैं, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज पीहू और दिया। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश प्रमिला बंचोर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोद्रा और श्राव्या रामटेके, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पपी, तमन्ना भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हैं, नाज मंजिल पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और इनके परिवार के सभी सदस्य, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुराउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया। अगले संदेश के साथ श्रोता गांधीनगर गुजरात से सुरेश मंजुला, विशाल निशा, सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका, श्रीनिजया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सभी। परवट वकाल बुलढाणा से नारायण कमल, दिव्या और जय हागे, मधुबनी बिहार से नवीन ज्योति, रानी मेनिका, श्वेता, स्वाति, चुलबुल, गोदावरी, प्रदीप और राजबहादुर। अगले संदेश के साथ सोंगा मगल रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका, गजेंद्र और हेयां चंदन, बंडुलोहार माया सिवांश, चंद्रकला और देवीदास, खुपटी महाराज से आप सभी जुड़े हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का संदेश मिला, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जुड़ चुके हैं, वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्य

हिंद्र संस्कृति पौरुष रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल, गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी और रानी, समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण जयश्री। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगले संदेश के साथ मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित और पीयूष कुमार श्रीनाम गोंदली उषा हर्षदा वैष्णवी पूनम और युवराज निमगाम महाराज से आप सभी जुड़े हैं। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल डुगू भाविक सिक्का जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं तेलंगाना से ख्वाजा रिजाउद्दीन फासी उदयन आयशा और जुबैरिया राहट गांव अमरावती मारा से हर्षा दिलीप अक्षय रुद्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य एमडी साबिर परवाना साजिद अली और जाहिद अली इन्हीं के साथ शाहिद अली भी जुड़ चुके हैं। संदेश मधुबनी बिहार से मिला है। वर्ली मुंबई से नवाब खान इशरत और अजहर इन्हीं के साथ अजीम खान जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में अगला संदेश छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि राजेश और शीतल राजेश का यशवंत साहू रमेशिया हर्ष और अंश साहू लोहारी डीही से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। अगले संदेश के साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी मोहम्मद यासीन साइमा नवाज हसन बाबू अहद मिफ्रा और चाहत गिरिडीही झारखंड के आप सभी श्रोता हैं। ग्राम पाहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर मधुबनी एक्सटेंशन राजनगर से कोशेश्वर कांति गुप्ता रुद्र फूलो देवी विजय स्वर्णिमा गणेश चुलबुल और इन्हीं के साथ गीता देवी। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका और भानु प्रकाश। कासगंज उत्तर प्रदेश से आप सभी पवन गौड़ सुयश आशीष तन्मय और अपूर्वा अशोक श्याम कुंवर प्रमिला चीनू दीपक अनुश्री श्याम कुंवर संदेश मिला भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। डी अशोक कुमार अविका जीविका सानू अर्चना कुमार संदेश प्राप्त हुआ है श्रीरामपुर से कोयते बस्ती पुनावली से अजय करिश्मा अविका साई ससोन बने हुकुम करमकर सुनीता हार्दिक प्राची और तन्या करमकर बिरडी मध्य प्रदेश से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। अजीत भावसार प्रमिला भावेश सनी भावसार संदेश प्राप्त हुआ वीरमगाम से। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये राधिका अनिष्का और तन्मय गजबीये गुजरात गांधीग्राम से पूजा प्रवीण पायल सोनी इन्हीं के साथ जगदीश चौहरी खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य कोयल नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुगू भाविक सिक्का। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का ही संदेश हमें प्राप्त हुआ है। जयराम सिंगणकर दिशांत और अर्पिता संदेश मिला है हमें यवतमाल से। अगले संदेश के साथ रविन्द्र मोहन दास आशा देवी राघव कुमार किशनगंज बिहार के आप सभी श्रोता हैं। सीताराम कांगड़ा बबीता बोट निखिल तन्वी अंकित कांगड़ा अगले संदेश के साथ सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित गर्वी और हिमाक्ष चज्जर हरियाणा से जुड़े बिट्टू भाटिया रीता रजत और मयंक भाटिया काशी निवास नागपुर से प्रकाश रंभाड़े भारती जानवी वैष्णवी रंभाड़े। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़ चुके हैं दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस हिप्परसोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी सायरा बानू बाबा शेख सिमर और करिश्मा शेख करणवीर हाउस बुच्चो कैचिया बठिंडा।

से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप एकम, दमन और अभिजोत, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी, बुलंदशहर के आप सभी श्रोता हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश डैनी और मनीष पवार, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता जुड़ चुके हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। चांदनी चौक गंडई पडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विकी नानू, रौनक सेन का संदेश मिला है। मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतना, सुलोचना भगत जुड़ चुके हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव, गरिमा शर्मा, अगले संदेश के साथ राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। सुनील पाठक, कमल दीपक गव्या, सुचा सिंह, विनोद पुरी, जयपाल यादव, जगराव पंजाब से।

श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। फिर से मिलेंगे आपके संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब

लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृहमंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान

तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिन

0: कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

भारत देश हमारा है, हम भारत के रहबे बारे, भारत देश हमारा है। भाई भाई मैं क्यों झगड़ा।

अभी तक आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, गीत रचना समीर की, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म हम हो गए आपके के कुछ गीत। और आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत सोनू निगम की आवाज में।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म हम हो गए आपके के कुछ गीत, और आइए चलते चलते सुन लेते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म हम हो गए आपके के कुछ गीत। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24

0: झंडे या सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री

0: शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून

0: सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
4: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence.

नवरंग कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज है शुक्रवार का दिन और आज ही के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम नवरंग, जो कि आधारित होता है आपके संदेशों पर और पत्रों पर। तो आइए करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ। संदेश मिला है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा अशफाक, आफरीन अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। खड़क सिंह चौंकर प्रकाश नगर मथुरा से जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा और माही मलिक,

मथुरा से अगली फरमाइश सबा अंसारी, शकील, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि की। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्कीन, शाहदरा दिल्ली के आप सभी श्रोता हैं। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु और रिदान खुराना, बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी और चंचल, गुन्नौर बुलंदशहर से आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, सरफराज, परदीन, सुहान, अरजान और इनके परिवार के सभी सदस्य, गुन्नौर यूपी से फारूक अली, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। मलौट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत, रमन, बलजीत, इन्हीं के साथ दिशा। अगले संदेश के साथ गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, सूरतगढ़, राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और बेबी जानविका, जलालाबाद वेस्ट से आप सभी श्रोता सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन रोहित पीयूष कुमार जुड़ चुके हैं। राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा, सिरसा से आप सभी का संदेश हमें मिला है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी आरजू हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति और संजीव बंटी जिंदल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, राज एसडी डब्लू बली बेलदार और महासमुंद से कलीम आसमा कुरैशी। इनके साथ

परिवार के सभी सदस्य छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। संदेश भेजा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सुधाकर राजे, संचित प्रतिमेश, प्रणाली सरवद और कल्पना सानवी देशमुख। कालेगांव जाफराबाद से आप सभी जुड़े हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार जुड़ चुका है। आप सभी मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। बालूद छत्तीसगढ़ से आप सभी देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा और प्रभा देवी, राधिका, अलकबीर जुड़ चुके हैं। हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखिलाय वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ के आप सभी श्रोता हैं। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, जिला बिजनौर से आप सभी। उमरखेड़ मारा से अभिजीत गवानकर, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश और टुकटुक गवानकर। छत्रपति संभाजीनगर से राजदीप, राजेश, राशि, शीतल और राजेश साबले पाटिल। महाराष्ट्र बोराला खुर्द से आदिनाथ बाग, अमोल बाग और अशोक देशमुख। पोखर डुमराव से डब्लू अस्मा सोनम, जेल रोड बिहार से वली और उल्लाह कुटारिया। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक और अनुषी श्याम कुमार। इकबाल अहमद, शमीम, रफत, इमरान, रईस, अखलाक और इनके समस्त परिवारीजन। संदेश भेजा है करजत से। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

यहाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले। हाथरस उत्तर प्रदेश से योगेश कुशवाहा, गणेश ऋषु देबू कुमारी, मनोज कुमार रेशम और इनके समस्त परिवारीजन। बीट शहर मारा से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयशी मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलते। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप पुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण और शशि बाला। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ चुके हैं। अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय शुभम, पवन जरिए, संजीव डावेराव। गांव खरिया जिला हिसार सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ एम असलम सैफी, जयबुनिशा, सद्दाम, सोनी, साहिद और आदाब। संदेश मिला है कासगंज से। कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले। पुनावली पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, इन्हीं के साथ विशाखा सोनबने। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजी, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक जुड़ चुके हैं। एक और फरमाइश हमें प्राप्त हुई है, श्रीगंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, गुरुमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल और कनाडा से रोबिन सिंह।

मलकापूर मरासी नारायण इंगले सोपान तायडे आशीष मुरहेकर नरविल मरासी पीएस नहावकर निर्मला और विशाल नहावकर जुड़ चुके हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लव्या अरब एस की पप्पी महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली मोनिका और रानू नानालाम से मीना तेजस जय हर्षित आलाम से संदेश मिला है छिंदवाड़ा बेरडी से। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला लाडली रिमझिम और सक्षम चौबे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फरमान इन्हीं के साथ और इनके समस्त परिवारीजन रोहिदास चौक पढ़नपुरी सिटी से प्रशांत सुनीता यशराज ऋषि घोड़के और यशराज सिंधे आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल मोरस अनिल अजीत आयुष और नंदिनी जंगेल सुकरी कला से अमित शकुन आरुषि आदित्य और अंजलि जंगेल मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस संदेश मिला है धूलापुर उत्तर प्रदेश से। इन्हीं के साथ एक और संदेश बुलंदशहर से सईद अब्बासी सरफराज परदीन सुहान और इनके परिवार के सभी सदस्य सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम होटल आवाजें मनहर उदास और आशा भोसले की।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव बगेरा दुर्ग से। नई बस्ती गंजद्वारा से मोहम्मद याशीन हाशमी, नाजमा तौसीफ और तैमूर हाशमी। अगले संदेश के साथ कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन अक्सा, नाजिया इब्राहिम सद्दाम। एक और संदेश हमें मिला है रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप सभी का संदेश है ये। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, चंदन, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश करुणा वर्मा जुड़ चुके हैं। एक और संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति और ओजस्वी यादव का ये संदेश है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, शादाब खत्री। सहनबाज अब्बासी, नवेद, सुहेल, अनम और यशव। संदेश मिला है मारहरा दरवाजा एटा से। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ और आलिया लुबना अंसारी। गंजुडवारा के आप सभी श्रोता हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला संदेश गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पुला से विजय सिंह, भानु प्रताप, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला और इनके समस्त परिवारीजन, गांव नवधरा से कोमल मास्टर, जसोदा, लाखन, तुरंत, रोहित, चंचल, अंजना और इनके समस्त मित्रगण, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांशी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा, ग्राम पंचायत पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, सुदर्शन पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, संदेश प्राप्त हुआ पद्मा टॉकीज नेपानगर से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल, लगान, पंडरिया छत्तीसगढ़ से आप सभी जुड़े हैं, सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, फाजालिका पंजाब के आप सभी श्रोता हैं, रज़ाक मोहम्मद, शमीम, इमरान और इरफान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आप सभी का संदेश हमें मिला है, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, अर्चना किशोर, हीरामन और सिद्धार्थ गोडा ने, इन्हीं के साथ संजय कुमार, राजेंद्र गुप्ता, दीपक, हिम्मत राव, संदेश प्राप्त हुआ अमरावती महाराज से, मामुलवाड़ी महाराज से सोपान ताइडे, तुषार कारांगले, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और इनके समस्त मित्रगण, नेहरू चौक पेंटर से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, अगले संदेश के साथ अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का ही संदेश मिला है, धांडी नांदुरा महाराज से श्री कृष्ण, संदीप, अमूल्य बाठे, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जुड़ चुके हैं, पारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर, गंडवारा इटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, क्षमा सरफराज, गुलफराज और मुस्कान,

मजनू कटिल्ला से मधु बालूजा, कमल सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा और माही मलिक, गांधीनगर गुजरात से सुरेश मंजुला, विशाल निशा जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी और उज्जवल। संदेश प्राप्त हुआ है लेवाई छत्तीसगढ़ से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान पूजा परिहार, बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, चंडीगढ़ से सतीश, विमला, अनेजा, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगला संदेश सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। इन्हीं के साथ एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम, अंशिका और तमन्ना कांगड़ा का। गंगानगर राजस्थान से मेहर ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। अगले संदेश के साथ मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, राही नगर गंजुडवारा से शमशुल खान, अदनान फैजान, अनु ताबिश आबाद और अरहान। गंजुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम पारुक्षिक, शमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज और मुस्कान। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगले संदेश के साथ खिल्लू परवेज, इमरान अनास, नवाजिश दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव उत्तर प्रदेश से आप सभी का ये संदेश हमें मिला है। बोरखेड़ा पीतरामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा जुड़ चुके हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी और तनुश्री। झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी, रिया जिया, तुषी, आयुषी, अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। समचुल कमर रही, अदनान फैजान गंडुडवारा से आप सभी का ये संदेश हमें मिला है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार, रिंकी शेखावत। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम चांदनी, आवाजें अनुपमा और सुरेश वाडेकर की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत शिव हरि का।

चाहा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश और योगेश ने। बुटगहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामचरण चंदीश, चंद्रकला शशिकांता ने।

श्रोताओ, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। अगले शुक्रवार को आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पहले सुरेश गुप्ता के स्वर में चंद गज़लें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे सुरेश गुप्ता के स्वर में चंद गजलें, और आइए आप सुनते हैं गीत, कलाकार हैं सुनील पाराशर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुनी गजलें, कलाकार थे सुरेश गुप्ता और चंद गीत सुनील पारसर के स्वर में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का ख्याल गायन। निबद्ध है राग हंस ध्वनि में। तबले पे संगत शरीफ अहमद खान की, हारमोनियम पर बाबू खान।

Gani gani pare gani padani gani padega ni padani.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का ख्याल गायन निबद्धता राग हंस ध्वनि में। तबले पे संगत कर रहे थे शरीफ अहमद खान, हारमोनियम पर बाबू खान। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बता

0: मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the knee tissue. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition's uproar over several issues, including police action during students' protest over the knee tissue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favored nation or MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security.